0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लिटस्को ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने

Ayun. कार्यक्रम घर आंगन के सभी श्रोताओं को प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंटरप्रेस चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमें जोड़ता है आपसे, जहाँ होती हैं ढेर सारी बातें। तो आज भी हमारे घर आंगन कार्यक्रम में है बहुत कुछ खास, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म थीम मिलन। और श्रोताओं, सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। बारिश, ठंडी हवाओं का मौसम तो ये होता ही है, साथ ही सावन का महीना जुड़ा है भक्ति, साधना और समर्पण से भी। जी हाँ, सावन यानी श्रावण मास का महीना, जो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पांचवा महीना होता है। सावन का महीना अत्यंत पवित्र, मंगलकारी और भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। ये जो पूरा महीना होता है वो देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है, और इस समय भक्त स्वयं को साधते हैं, व्रत पूजा जाप करके वो स्वयं को समर्पित करते हैं अपने आराध्य को। आज हर तरफ भगवान शिव के जयकारों की गूंज है, और इस पूरे महीने ये जो गूंज है वो ऐसे ही होती रहेगी। और आज से, जैसा कि हम कह ही रहे हैं, जानते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण करेंगे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सावन यानी श्रावण मास की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

भैरवी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आवाज थी कविता कृष्णामूर्ति और रूप कुमार राठौर की। चलो अब बात होगी दिन विशेष की। हर वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष का जो थीम है वो है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, यानी धोखाधड़ी के जाल में फंसे लोग। यह हमें सतर्क रहने और दूसरों को जागरूक करने का संदेश देता है। हमें याद रखना होगा कि झूठे नौकरी के वादे, विदेश भेजने के लालच या ऑनलाइन ठगी के जाल में हम ना फंसें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। तो आज आइए हम सब मिलकर मानव तस्करी मुक्त, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प लें। ये दिन तो विशेष है ही है, इसके साथ आज एक और जो दिन है वो खास है, वो है अंतर्राष्ट्रीय

उपभोक्ता दिवस जो कि मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर। तो बात करते हैं इस दिन की, जो हमें प्रेम, सौहार्द और विश्वास का संदेश देता है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। जी हाँ, इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मजबूत मित्रता विकसित करना और दूर दूर तक मित्रता को बढ़ावा देना है। हर साल 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में ये मनाया जाता है, और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में आधिकारिक मान्यता दी। श्रोताओं, इसका उद्देश्य विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच मित्रता, आपसी सम्मान और शांति को बढ़ावा देना है। इस दिन का संदेश केवल व्यक्तिगत दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन वैश्विक भाईचारे और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज इस अवसर पर हम अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें और प्रेम, विश्वास और सद्भाव के इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकल्प लें।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी नीला आकाश। दोस्तों, पानी की हर बूंद कीमती है, क्योंकि धरती पर पीने का जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी हो जाती है पानी की हर बूंद को बचाना, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को साफ स्वच्छ जल दे सकें। और इसी दिशा में कैच द रेन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। श्रोताओं, ये अभियान हमें संदेश देता है कि जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो वर्षा जल को संचित करें। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का जो संग्रह है वो बढ़ाना है, और साथ ही साथ भूजल स्तर को सुधारना भी है। ये अभियान तालाब, कुएं, झील और अन्य जल स्रोतों

की बात करता है और उनको पुनः जीवित करने की भी बात करता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। श्रोताओं, हर व्यक्ति और समुदाय को जो है वर्षा जल बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा भी और हम सब जानते भी हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। सोचिए अगर पानी हमें पीने को ना मिले तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। तो इसे बचाने की जिम्मेदारी तो हमें उठानी होगी, एक पहल करनी होगी जो हमारे वर्तमान के लिए तो हित में है ही है, साथ ही साथ ये हमारे भविष्य के हित के लिए भी है।

बुड्ढी। अभी इस फिल्म में आपने ये गीत का जो गीत सुना और आवाज थी वाणी जयराम की। और श्रोताओं देखिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की, जो मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी या गिरवी के पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ऋण और ब्याज पर छूट प्रदान करती है। श्रोताओं योजना की मुख्य विशेषता ये है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना किसी कोलैटरल या गारंटर के शिक्षा ऋण मिलता है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट दी जाती है और 7.5 लाख तक के ऋण पर सरकार बैंकों को 75% क्रेडिट गारंटी देती है। आवेदन के लिए छात्र पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए सीधे ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये लाभ भारत के लगभग 860 उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो अगर आपका सपना है अपने बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में भेजने का, तो इस योजना से आप लाभान्वित हो सकते हैं और अपने बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म की गाइड। और अब बात हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई। तो महिलाएं घर परिवार की धुरी होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। ऐसे में महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, कि बाहर का काम है, घर का काम है, सुबह भाग भाग कर काम करना। तो जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की पहचान है, और ऐसे में जब जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा हो, भाग दौड़ थोड़ी सी ज्यादा हो, तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना ध्यान रखेंगी तो वो परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी, और ये उनके लिए तो जरूरी है ही है, परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे उन पोषक तत्वों की, जिनकी पर्याप्त मात्रा महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन यानी लोह तत्व की। अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयरन से भरपूर भोजन जरूर लें, और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह से ही आयरन सप्लीमेंट लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, तो अपने आप तो बिल्कुल ना ही लें। दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी। ये दोनों मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी कमी से कमजोरी, हाथ पैरों में झनझनाहट और कभी कभी याददाश्त पर भी असर पड़ने लगता है। तो विटामिन B12 का जो आप सप्लीमेंट है या जो भी आपकी डाइट में जैसे मिल सकता है, तो उसे अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम भी हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियों और अच्छी नींद के लिए सहायक हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, वो ये कि सप्लीमेंट जो है वो भोजन का विकल्प नहीं है। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध और दूध के जो प्रोडक्ट हैं, जो दुग्ध उत्पाद हैं, उन्हें जरूर शामिल करें। साथ ही साथ फल, मेवे, नियमित व्यायाम, पर्याप्त धूप और अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की असली नींव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी सप्लीमेंट का सेवन स्वयं से शुरू ना करें। हम बार बार यही कहेंगे कि चिकित्सक से परामर्श लें, और तभी इनकी की जो है शुरू करें, और सलाह तो लें ही। साथ ही साथ अगर चिकित्सक ये कहता है कि आपको कुछ जांच करवाने की जरूरत है, तो जांच भी करवा लें, ताकि आपका जो जांच करवाने से आपके जो ब्लड के पैरामीटर हैं वो पता चल जाए, और उसी के अनुसार अपनी डाइट में आप अपने भोजन के साथ तो सुधार करें ही करें, और अपनी डाइट में इन सप्लीमेंट्स को शामिल करें। तो स्वस्थ महिला जो है वो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि महिलाएं अपना ध्यान रखें, और देखिए महिलाएं तो अपना ध्यान रखेंगी ही रखेंगी, अगर हमारे साथ के लोग, हमारे अपने लोग भी महिलाओं का ध्यान रखें, तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बेमिसाल। और श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा। श्रोताओं, अब बात करते हैं उस सम्मान की जो बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ये। ये सम्मान उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कम उम्र में किसी क्षेत्र में खास उपलब्धि हासिल की हो। बहादुरी, खेल, विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें बच्चा अगर कुछ खास करता है तो उसके कार्य को, उसकी उपलब्धि को एक नई पहचान दी जाती है। आपको ये भी बता दें कि जो ये पुरस्कार है वो 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिया जाता है और कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी इसमें रखा जाता है कि बच्चा जो है वो भारतीय नागरिक हो और भारत का ही निवासी हो। पहले इस पुरस्कार को का उसने प्राप्तकर्ता ना हो, यानी कि उसको ये पुरस्कार पहले ना मिला हुआ हो, और कोई भी उपलब्धि या कार्य अगर उसने कुछ किया है तो जो वो नामांकन है कि अंतिम तिथि से पिछले 2 वर्षों के भीतर का होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस पुरस्कार का आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और इस वर्ष नामांकन की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2026 यानी कि कल तक है। तो अगर आपका बच्चा या आपके आसपास किसी ऐसे कोई बच्चा है जिसने कोई बहुत ही अच्छा काम करा और आपको लगता है कि वो भी इस पुरस्कार का हकदार हो सकता है तो आपके पास आज का और कल का समय है, आप उसको वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं।

की सुना फिल्म थी दो कलियां। दोस्तों हमारा देश संस्कृति परंपराओं और कई कलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारी कलाएं देश को एक अलग पहचान देती है और इन कलाओं को सहेज कर रखने वाले जो कलाकार हैं वो इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं और आप भी मानते ही होंगे। क्यों तो क्यों ना आज बात करें एक ऐसी कला की जो मालवा क्षेत्र से संबंधित है, मटकी नृत्य। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है ये मटकी नृत्य, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और उत्सवों के दौरान सिर पर मिट्टी का छोटा सा घड़ा संतुलित करके किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत एक महिला सिर पर मटकी रखकर अकेले करती है और धीरे धीरे ढोल या ढोलक की विशेष मटकी ताल पर अन्य महिलाएं भी गोलाकार घेरे में शामिल हो जाती हैं। नर्तकियां पारंपरिक मालवी साड़ी या लहंगा और साथ ही साथ आभूषण पहनती हैं और चेहरे पर घूंघट रखती है, यानी कि इस नृत्य में चेहरे को पूरी तरीके से ढककर किया जाता है। और इस लोक नृत्य के कुछ स्थानीय रूपों को आड़ा और खड़ा नाच भी कहा जाता है। यह आनंद, उत्साह, उल्लास और सामूहिक जीवन का प्रतीक है, जिसे खुशी के अवसरों पर उल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई वाकई भारतीय कला संस्कृति जीवंतता का पर्याय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें

0: संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हवा में एक अजीब सी खामोशी है, पर इस खामोशी के पीछे छिपे हैं एक ऐसे राज जिसने 2004 में पूरे देश के दिलों की धड़कने बढ़ा दी थी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने बोल्डनेस, सस्पेंस और म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी थी। भट्ट कैंप की आइकॉनिक फिल्म, जी हाँ, मर्डर। एक अधूरी शादी, एक पुराना प्यार और एक गलत कदम जो ले जाता है एक ऐसे मोड़ पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं उस गाने से जिसने आमिर जमाल की आवाज में हर आशिक के दिल को छू लिया था।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और कुछ ही पलों पहले आपने सुना था गाना कहो ना कहो। इस गीत को सुनते ही दिल 2004 के उस दौर में चला जाता है, ये बात आप भी मानते होंगे। अब आते हैं कहानी पर। सिमरन यानी कि मल्लिका शेरावत बैंकॉक में अपने पति सुधीर यानी कि अश्मित पटेल के साथ एक आलीशान जिंदगी जी रही है। बाहर से सब परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर अंदर सिमरन बहुत अकेली है। सुधीर अपने काम की दुनिया में इतना व्यस्त है कि सिमरन के पास ना तो उसके लिए वक्त है और ना ही प्यार। जब दिल के अंदर ना प्यार हो और दिल अंदर से खाली हो तो गुमराह होना आसान हो जाता है। एक दिन बारिश के बीच सिमरन की मुलाकात होती है अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड सनी से। सनी बेपरवाह, जुनूनी और सिमरन की तन्हाई को उभाप लेता है। सनी की आंखें और उसकी बातें सिमरन को उस अतीत में खींच ले जाती हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जुनून था। बारिश की बूंदों के बीच जब ये दोनों करीब आते हैं तो बॉलीवुड को मिलता है एक सबसे रोमांटिक और प्यारा गाना जिसे गाया था कुणाल गांजावाला ने। तो आइए इस गाने को सुनते हैं जिसने कुणाल को स्टार बना दिया था।

श्रोताओं भी अपने गीत सुना और भीगे होते रहे। इस गीत को सुनना और सुनने के बाद जो महसूस होता है वो कुछ अलग ही है। दोस्तों, हर गलत कदम की एक कीमत होती है। कहानी में सिमरन और सनी का यह अफेयर सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहता, ये बन जाता है एक खतरनाक पागलपन। सिमरन को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है और अपने पति को धोखा दे रही है। वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, पर वहीं सनी है। सनी आसानी से उसे छोड़ने वालों में से नहीं था। सनी का प्यार अब सनक बन चुका था। वो सिमरन को ब्लैकमेल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुधीर को अपनी पत्नी के बदले हुए बर्ताव पर शक होने लगा। वो एक निजी जासूस को सिमरन के पीछे लगा देता है। सिमरन एक तरफ अपने पति के शक से डर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी की सनक से। दिल में खौफ है, लेकिन बाहर मुस्कुरा।

Yeah.

Pourquoi tu comptes

कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रोताओं, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हवाओं में सिर्फ डर और बदला लेने का जुनून है। सुधीर को सब पता चल जाता है। वो सनी के घर पहुंचता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है और गुस्से में आकर सुधीर सनी के सर पर भारी चीज से वार कर देता है। सनी जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सुधीर डर जाता है। वो सनी की बॉडी को अपनी कार के डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह पर उसे दफना देता है। वहीं दूसरी तरफ सिमरन को लगता है कि सनी उसे छोड़कर चला गया है, लेकिन जब पुलिस इन सब बातों की जांच शुरू करती है तो सुधीर और सिमरन दोनों का दिल दहल उठता है। पर रुकिए, क्या सनी सच में मर चुका था? क्लाइमेक्स में आता है कि एक धमाकेदार ट्विस्ट। जब सुधीर और सिमरन लाश की जगह पर पहुंचते हैं और गड्ढा खोलकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो गड्ढा खाली होता है, सनी जिंदा होता है और वो बदला लेने के लिए लौट आता है। अंत में सुधीर अपनी पत्नी सिमरन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और इस तरह सिमरन को अपने पति के सच्चे प्यार का एहसास होता है। इस पूरे थ्रिल और इमोशन को जो गाना सबसे ज्यादा खूबसूरती से जोड़ता है, आइए उस गाने को सुनते हैं।

शुदा हूँ भैया अपने खूबसूरत गीत सुना और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मर्डर की। महेश भट्ट और अनुराग बसु ने मिलकर 2004

थ्रिलर फिल्म बनाई, उसने इमरान हाशमी को बॉलीवुड का उभरता सितारा बना दिया। वहीं मलका शेरावत उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बनकर उभरी और इस फिल्म के संगीतकार ने कई सारी बुलंदियां छुई। आज भी जब बारिश होती है या रात के सन्नाटे में कोई थ्रिलर देखने का मन होता है तो इस फिल्म की याद हमें आती है। उम्मीद है आज का ये फिल्मी सफर और इस फिल्म के गाने आपको बेहद पसंद आए होंगे। सुधीर, सिमरन और सनी की ये कहानी, ये आइकॉनिक गाने जिसे अभी आपने सुना, तो चलते चलते आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का एक और गीत और अपने दोस्त को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इस कार्यक्रम को जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को तहे दिल से सुनते हैं, और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राज्यसभा आज जनतक प्रीख्या में अनुचित साधना की रोकथाम शोध बिल 2026 नूं विचार ते पास करन ते लेगी। बिहार, गुजरात ते मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा हल्कियां विच जिमनी चोणां लई वोटिंग जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट वल्लों 2020 के दंगियां दे मामले नूं रद्द करने विरुद्ध चंडीगढ़ प्रशासन की पटीशन ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते होर आप नेतावां तों जवाब मंगिया है। पट्टी दर्ज जाता बारे राष्ट्रीय कमिशन वल्लों पंजाब विच पट्टी दर्ज जाता नाल संबंधित सफाई कर्मचारियों विरुद्ध कथित पुलिस वधीकियां दे मामले विच

मध्य प्रदेश के दतिया विच 32.53% वोटिंग दर्ज की गई। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट वालों 2020 के दंगियां के एक मामले नूं रद्द करन विरुद्ध चंडीगढ़ प्रशासन की पटीशन ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते होर आप नेतावां तो जवाब मंगया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत आते जस्टिस जॉयमाला बागची ते वी मोहना दे बेंच ने भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी के नेतावां हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीथेयर, बलजिंदर कौर, अमन अरोड़ा ते होरां नूं नोटिस जारी कीते ने। अडिशनल सोलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि यह गैर कानूनी कट का मामला सी आते बल की तैनाती की गई सी, जिसके नतीजे वजो एक गंभीर अपराध होया, पर हाई कोर्ट ने इस नूं पूरी तरह उलट हुक्म विच रद्द कर दिता। हाई कोर्ट ने पहला कहा सी कि आप नेतावां विरुद्ध पहली नजरे

0: 2026, as passed by the Lok Sabha. Today in Rajya Sabha, by grant of waiver under Rule 123 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Council of States, there is Rajya Sabha. Accordingly, a supplementary list of business for today has been issued for taking up this bill for consideration passing.
1: इस बिल में कसूरवार पाए गए अफराद को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनके अमलाक को जब्त किए जाने जैसी सख्त सजा की गुंजाइश रखी गई है। मुकदमात को तेजी से निपटाए जाने के लिए इस बिल में ये कहा गया है कि रियासती सरकारों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेंगी। इस बिल में ये भी कहा गया है कि मामलात की छानबीन थाने में इत्तला रिकॉर्ड कराए जाने की तारीख से 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल की जानी चाहिए और मुकदमे की कार्रवाई फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होनी चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई नीट इम्तिहान मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोरगुल के पेश नज़र दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौरते मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित को सोने का तमगा देने और जीतने और मोहम्मद बासिल को चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। बाद में जब स्पीकर ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करना पार्लियामानी रिवायात के मुताबिक नहीं है।
2: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
1: शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की गोली बारूद की तफसीलात महफूज रखने को कहा है। अदालत आलिया ने उन अर्जदाश्तों में एक पर सवाल उठाया जिसमें अमन व कानून की सूरतहाल से निमटते वक्त मेटेलिक पैलेट गन पर मुकम्मल पाबंदी की गुजारिश की गई है। उसने पुलिस तहकीक व तरक्की के ब्यूरो की एडवाइजरी का हवाला दिया और कहा कि पुलिस को गैर मामूली सूरतहाल में पैलेट गन इस्तेमाल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला माल्याबागची और वी मोहना पर मुश्तमिल एक बेंच ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाज के दौरान पैलेट से जख्मी हुए अफराद को इलाज व मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जानिब से 2020 के फसादात के एक मामले को मंसूख किए जाने के खिलाफ चंडीगढ़ की इंतजामिया की एक अर्जी पर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और आपके दीगर रहनुमाओं से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमालिया बागची और जस्टिस वी मोहना की एक बेंच ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीठेर, बलजिंदर सिंह कौर, अमन अरोड़ा और दूसरों को नोटिस जारी किए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि यह गैरकानूनी तौर पर इकट्ठा होने का मामला था और फोर्स तैनात की गई थी जिसके नतीजे में काबिले दस्तंदाजी जुर्म का इर्तकाब हुआ था। 2020 में FIR दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि बिजली की दर में इजाफे के खिलाफ आपके एक एहतजाज के दौरान जनाब मान समेत पार्टी के कई रहनुमाओं ने तकरीबन 750 से 800 पार्टी वर्करों को चंडीगढ़ में पंजाब के उस वक्त के वजीर आला अमरिंदर सिंह की रिहायशगाह की जानिब मार्च करने को उकसाया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मांजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया में वोटिंग हो रही है। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक पटना में बांकीपुर असेंबली हलके में सुबह 11 बजे तक 11.50% वोटिंग दर्ज की गई। गुजरात के मांजलपुर हलके में वोटिंग का फीसद 14.24% जबकि मध्य प्रदेश के दतिया में 32.53% वोटिंग दर्ज की गई है।

पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी की सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल सेलिंग टीम से बातचीत की और उनकी गैरमामूली कामयाबी और पुख्ता आजम की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि सेलिंग उनकी कामयाब मुहिम मुल्क के लिए इंतहाई बाइस फख्र है। शरवन महीने की सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुकूमतों ने बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज श्रावण के पवित्र महीने के आगाज पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, केरला, माहे और राजस्थान में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक के साहिली और जनूबी अंदरूनी इलाके, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में कल तक इसी तरह के हालात बने रहने का इम्कान है। इस दौरान पंजाब, ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी तेज से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। IMD ने शुमाल मशरकी भारत में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान कौमी राजधानी में अगले 2 से 3 दिन तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। कनाडा के शहर ओंटारियो में भारत की मर्दों की स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत की 5वीं पोजीशन की मर्दों की टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा, जो जापान को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है। खास खबरें एक बार फिर। राज्यसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी, जिसका मकसद पेपर लीक के कसूरवारों के लिए सख्त कानून बनाना है। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान RAF की जानिब से इस्तेमाल गोली बारूद की तफसीलात को महफूज रखने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग जारी है। और कनाडा में मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कर...

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
1: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने

0: सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जी आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरु मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ദരേന്ദസ് ആകാശവാണി ദില്ലി നാഷണൽ ന്യൂസ് സർവീസ് പ്രോഗ്രാമുള്ള ഇങ്ങനെ ചോദ്യപ്പിൻ മീഡിയം വേവ് സോഞ്ചി നഗബ്ഗ്യാനുഷുബി കിലോ ഹർസ് മീഡിയം വേവ് തുർക്കിയാൻ അങ്ങുഷുബി നഷ്ബി കിലോ ഹർസ് ദോന എഫ് എം ആശാരി അച്ചിക് മെഗ ഹർസ് യങ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ന്യൂസ് ഓൺ എയർ കതിയോ ആകാശവാണി കരികിലിൻ വാസ്പോ നിമിത്ത് ഉസ്സത് ന്യൂസ് നാങ് ഫെറ്റ് സോസു കസിത എൻ സി ആർ ടി ചോസ്ന സ്പോൺസർ പ്രോഗ്രാം ചിങ്ങനസത് ഉമങ്ങ്

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत।

0: पुत रहे। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
0: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
1: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
0: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
1: श्रोताओं उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
0: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओ आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
7: चलो, अरे, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चल

0: लोहा गर्म हो रहा है। ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
2: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए

0: हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर

0: उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा
3: हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
4: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
5: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
6: सर सर ये टेलीग्राम।
4: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
6: क्या हुआ सर?
4: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
6: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
4: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
6: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
4: हाँ चार्ल्स।
5: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
7: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
4: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
7: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
4: देखिए आप,
7: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
4: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
7: मेरा अच्छा, बेटा।
4: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
5: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
5: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
5: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को

0: करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार। उमंग।

की दूसरी मजलिस की नशात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामईन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

से कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद।

मीडियम वेव्स 1171 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब से चंद लगों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

रूस की जानिब से यूक्रेन पर किए गए एक मिसाइल और ड्रोन हमले में दो बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन की फौज ने इत्तला दी है कि रूस ने ये हमले राजधानी कीव और यूक्रेन के दिगर शहरों में किए। शहर के मेयर ने आवाम से अपील की है कि वो महफूज मकामात पर पनाह लें। यूक्रेन के सदर व्लादिमिर जेलेंस्की ने कल खबरदार किया था कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के एक दिन बाद यह हमला किया गया, जबकि मुलाकात में यूक्रेन के सदर ने सदर ट्रंप से कहा था कि यूक्रेन को इजाफी फजाई दिफाई निज़ाम फराहम किया जाए। मीटा ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी जनाब कृष्णन ने कहा कि हुकूमत ने मेटा की सीनियर क्यादत से कहा है कि वो हाजिर हो और इस वाक़े के पीछे वजूहात की वजाहत करे, साथ ही ये भी बताए कि इस तरह की कोताहियों की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के नुमाइंदे आइंदा दिनों में सरकारी अहदेदारों से मुलाकात करने वाले हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी की तरफ की सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल सेलिंग टीम से बातचीत की और उनकी गैरमामूली कामयाबी और पुख्ता आज़म की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि सेलिंग उनकी कामयाब मुहिम मुल्क के लिए इंतहाई बास फ़ख्र है। वजीर दिफा ने कहा कि टीम ने न सिर्फ इस मुहिम के जरिए समंदर को अबूर किया बल्कि मुश्किल फौजी कार्रवाइयों के सिलसिले में खवातीन की सलाहियत पर तवील अरसे से उठते आ रहे सवालात को भी माकूल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस मुहिम ने इस बात को साबित किया है कि जिस्मानी सलाहियत, जहनी मजबूती और क्यादत का तायुन सिन्फ की बुनियाद पर नहीं होता। जनाब सिंह ने कहा कि टीम की हौसलयाबी मुल्क की हर बेटी के लिए बास तरगीब है। उन्होंने तमाद जाहिर किया कि उनकी इस कामयाबी से और नौजवान खवातीन के बड़े ख्वाब देखने, चैलेंजों से निमटने और मुल्क की तामीर में तआवुन करने के सिलसिले में हौसला अफजाई होगी। यह खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका में एक शख्स को साल 2022 में मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर हमले के मामले में वफाकी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के तहत कसूरवार करार दिया गया है। सलमान रुश्दी को दहाइयों पुराने अपने नावल शैतानी आयात की वजह से कत्ल की धमकियों का सामना है। जूरी ने मुलजिम हादी मतार को सभी इल्ज़ाम के तहत कसूरवार करार दिया, जिसमें सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस होना भी शामिल है। 28 साल मतार अगस्त 2022 में एक एम्फीथिएटर स्टेज पर कत्ल की कोशिश की वजह से न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल कैद की सज़ा काट रहा है। वफाकी तौर पर कसूरवार करार दिए जाना सजाए मौत की वजह बन सकता है। सलमान रुश्दी, जो मुसन्निफों की सलामती के बारे में ज़रा ख्याल करने वाले थे, उन पर सामीन के सामने 15 मरतबा चाकू से वार किया गया। इस हमले में रुश्दी शदीद जख्मी हो गए थे और अपनी दाई आँख की बिनाई खो बैठे थे। रूस की वफाकी सिक्योरिटी सर्विस FSB ने टेलीग्राम के बानी पैवेल द्रोफ पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए सहूलत पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया है और उन्हें बल्कमामी सतह पर मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल करने की गरज से ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बात रूस के सरकारी मीडिया ने बताई है। FSB ने इल्ज़ाम लगाया है कि टेलीग्राम ने उन चैनल्स और चैट्स को नहीं हटाया जिन्हें यूक्रेन के खुफिया इदारे बेहतर तौर पर रूस के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हुक्काम ने यह दावा भी किया है कि टेलीग्राम की डेटिंग सर्विस की रूसी शहरियों की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए भर्ती करने की गरज से इस्तेमाल किया जा रहा था। FSB ने बताया है कि टेलीग्राम के बानी की गिरफ्तारी के लिए एक बेअल्कवामी वारंट जारी किया गया है। जापान की वजारत दाखिला और मवासलात के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में शहरियों की आबादी 42 बरस में पहली बार

0: करोड़ से कम हो गई है, जो शरह पर पैदाइश में कमी की वजह से आबादी के बहरान की अलामत है। वजारत की जानिब से जारी किए गए आदमशुमार के मुताबिक यकुम जनवरी तक जापान में शहरियों की तादाद 11,97,36,483 थी। भारत के महकमे मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, केरला, माहे और राजस्थान में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। कनाडा के शहर ओंटेरियो में भारत की मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत की 5वीं पोजीशन की मर्दों की टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा, जो जापान को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है। इस दौरान खवातीन की टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरमन मुजाहरीन पर पाकिस्तानी मुसल्लफात की जानिब से वहशियाना हमले का सिलसिला जारी है। अब तक 40 से ज़्यादा सिविलियन हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने मुख्तसर वक्फे के बाद ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स को अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने दहशतगर्दी के जुर्म में कसूरवार करार दिया है। रूस की वफाकी सिक्योरिटी सर्विस FSB ने टेलीग्राम के बानी पैवेल द्रोफ पर दहशतगर्दाना हम सरगर्मियों के लिए सहूलत पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। और कनाडा में भारत की मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश बंधन फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ।

रे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

बरसात की रात फिल्म का नगमा सुनिए, सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट का गाया हुआ। नगमा निगार साहिर लुधियानवी, मौसीकी रोशन की।

और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए मेला फिल्म का नगमा, शमशाद बेगम, मुकेश और साथियों का गाया हुआ। नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी नौशाद की।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इस प्रोग्राम के तहत एक मुबाहिसा सुनिए। मौजू है अखलाकी अकदार और हमारा तालीमी निज़ाम।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आज अंदाज नज़र के तहत अखलाकी अकदार और हमारा तालीमी निज़ाम के मौजू पर गुफ्तगु करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगु करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर नदीम अहमद। आप सबों का इस मुज़ाकरे में इस्तकबाल है। प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, हम चाहेंगे कि जो अखलाकी

0: से हम फौरी तौर पर जो हमारा जहन जाता है तो उन्हीं किताबों पर उन्हीं सहाइफ पर जाता है कि जिनको हम अखलाकी दस्तावेज कहा करते हैं, यानी कोई भी समावी सहीफा दस्तुरुल अमल ही होता है। और दस्तुरुल अमल होने के मायने क्या है कि जाब्ते अखलाक होता है जिसको हम कभी हिदायतनामा भी कहा करते हैं।
1: जी
0: तो गोया कि जब हम आज के गुफ्तगू का ये टॉपिक रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जहन में एक बायुसकुन तसव्वुर भी है कि हम शायद हम अखलाकी अखदार से दूर होते जा रहे हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसके बायस हमारी समाजी सतह पर जिस तरह से जाबते अखलाक हमारी अमली जिंदगी में होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। या नई नस्लों में कह लीजिए कि हमारी नई नस्लें जो कि स्कूल से यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही हैं, तो शायद हम ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखना चाहते हैं कि वो अखलाकी तालीम हासिल करके हमारी समाजी जिंदगी में दूसरों के लिए एक मिसाल राह साबित हों। तो अब पहले हम ये तयन कर लें कि अखलाकी अकदार से हमारी मुराद क्या
1: जी
0: है ना। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये एक रिलेटिव टर्म है, एक इजाफी टर्म है, लेकिन पूरी तरह से मरती नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कोई आबशार गिरता है, पत्थर जो है घिसता है लेकिन खत्म नहीं होता, वो तो घिस कर तब्दील होता रहता है। तो कदरें जो है उसमें तब्दील होती रहती हैं कदरों में, और लेकिन कुछ कदरें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि वो दायमी नौइयत की हैं, जो हमेशा हमारे जिंदगी के निज़ाम में उनकी अहमियत कायम रहेगी। मसलन हम एक हुस्ने अमल और हुस्ने किरदार की बात करते हैं। हुस्ने अमल का ताल्लुक सीधे सीधे अखलाक से है, खुल्क से है, और अमल इसमें शामिल है। हुस्ने अमल के साथ अमल का तसव्वुर है, लेकिन क्या हम अमल को नजर से या नजरिए से अलग कर सकते हैं? जब हम तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो उसमें नजरिया ही आता है कि हम नजरियाती तौर पर एक ऐसा दस्तुर अमल बनाएं तालीम का कि जिसमें नजरियाती सतह पर हम उनको अखलाकी तालीम दे सकें। वो अमली तालीम नहीं है, वो
1: जी
0: एक नजरी तालीम है। इसलिए गालिब का एक मसला याद आ रहा है, ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का ऐसा ख्याल, यानी एक ख्याल हुस्न कायम कीजिए। पहले पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कायम कीजिए। उस कॉन्सेप्ट के लिए अब आज के पीरियड में अगर हम इस तस्वुर को सामने रखते हैं तो हमें ये देखना होगा कि आज के मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इनके मुहर्रिकात क्या हैं और इनकी वजूहात, ये वजूहात क्या हैं कि आज अखलाकी सतह पर हम बहुत ही जवाल पजीर रफ्तार को समझ रहे हैं। या इस सार्फी समाज को सामने रखें, साइंटिफिक एज को सामने रखें, हम अपने से जो मशीनी एज है इसको सामने रखें, तो ये तस्वुर कायम होता है नदीम मियाँ कि जितना हम मसलन इंटरनेट है,
1: जी
0: कंप्यूटर है, हम उसके जरिए बहुत सा इल्म हासिल करते हैं, और उसमें हम जो इल्म हासिल करते हैं तो ये भी रखते हैं कि हमारे अब मेमोरी का सारा खजाना उसमें मौजूद है। अब हम जब दिमाग में मेमोरी जो रखे हुए हैं उससे कहीं ज्यादा उसमें मौजूद है, इसलिए हम मेमोरी से काम कम ले रहे हैं और इंटरनेट से मशीन से ज्यादा काम ले रहे हैं। और जो हम भूल जाते हैं तो हम फौरन मशीन का सहारा लेते हैं, गोया के मशीन ह्यूमन होती जा रही है
1: जी
0: और हम इनह्यूमन होते जा रहे
1: इनह्यूमन
0: हैं। यानी मशीन जिस तरह ह्यूमन होती जा रही है तो वो जो इनह्यूमन हो रहे हैं इसका मतलब ये कुछ अखलाकी कमियां हैं, अखलाकी कुछ महरूमियां हैं, और जो हम उससे की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। उस भरपाई के लिए हमारे जहन जाता है तालीमी निज़ाम की तरफ कि हमारे पास क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह से।
1: डॉक्टर सैयद रजा साहब, हम चाहेंगे कि आप इस नज़रिए के बारे में क्या सोचते हैं।
2: देखिए, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर रतिकुल्ला साहब का कि उन्होंने पूरी इस गुफ्तगू का एक नहज, एक पैटर्न जो है शुरू में एक क्लियर कर दिया।
1: जी
2: उससे गुफ्तगू जो है बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेगी। सर ने जैसा कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि बहुत ही मायूसकुन माहौल है अखलाकी अकदार के ताल्लुक से और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके ताल्लुक से। देखिए, जो हमारा पूरा तालीमी निज़ाम है, सिर्फ तालीमी निज़ाम ही नहीं बल्कि जो पूरी हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल है, उसमें अखलाकियात का एक बहुत ही अहम किरदार है। और जब तक के हमारे तालीमी निज़ाम में उन वैल्यूज़ को, उन मोरलिटी को, उन अखलाकियात को हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तब तक ये जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा शानदार माजी है, उससे हम منحرف ہوتے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب موجودہ تعلیمی نظام کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ چاہے

0: किसी भी तरह की हुकूमतें हों, किसी भी आइडियोलॉजी के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, वो अखलाकी अकदार पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है उसमें सब कुछ है मगर अखलाकी अकदार नहीं है। पुराना जो तालीमी निज़ाम था उसमें अखलाकी अकदार था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। इसकी वजह यह है कि देखिए, हम एक बाजार कल्चर की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे एक निज़ाम में प्राइवेटाइजेशन आ गया है। हम तालीम को ये सोच करके हासिल करते हैं कि इसके बाद हमें रोजगार हासिल करना पड़ेगा। पुराना जो तालीमी निज़ाम था उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। उसमें वालदैन अपने बच्चों को जब स्कूल में और कॉलेजेस में भेजते थे तो उनके सामने ये बातें भी जहन में रहती थी कि जो मॉरल वैल्यूज हैं जिंदगी के, उसको भी वो सीखेगा। और इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज हिंदुस्तान में जिनका एक शानदार माजी रहा है अखलाकी अकदार के हवाले से, उन्होंने तालीमी निज़ाम को भी दुरुस्त किया और साथ साथ अखलाकी निज़ाम को भी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूरा एक सिस्टम था एक ज़माने में, वो तालीम से ज़्यादा वहाँ के मॉरल वैल्यूज़ थे, वहाँ की अखलाकियात थी। वहाँ जब बच्चे पढ़ करके निकलते थे तो वो तालीम से भी आरास्ता होते थे, और जो उनका पूरा लाइफ स्टाइल था, उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनका लिबास था, वो भी उनके पूरी अखलाकियात और उनके पूरे माजी का पता बताता था। लिहाजा मौजूदा दौर में आज किसी भी आइडियोलॉजी का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, मैं किसी मजहब से इस चीज को मखसूस नहीं कर रहा हूं, वो परेशान है। वो परेशान ये है कि बच्चे एजुकेटेड तो हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन वो हमारा जो पूरा इखलाकी निज़ाम अकदार है उससे वो बहुत पीछे हो गए। जैसा कि प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब ने कहा कि बहुत ही मायूसकुन माहौल है। इस पे सोचने की जरूरत है, इस पे जोर देने की जरूरत है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बन रही है उसमें इस बात को भी सामने रखा जाए कि अगर कोई बच्चा स्कूल में आए, कोई स्टूडेंट कॉलेज में आए, तो वो ठीक है मॉडर्न एजुकेशन भी सीखे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने अकदार को, वो अपने पूरे सिस्टम को, वो अपने शानदार माजी को किस तरह से प्रिजर्व कर सकता है, इसको भी सोचने की जरूरत है।
1: डॉक्टर नदीम अहमद साहब, आप
2: बहुत
1: क्या कहना चाहेंगे अखलाक इकदार और हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसके ऊपर?
3: मैं इसे दूसरे पहलू से जोड़ता हूं और मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा कि ये पेश नज़र मौजू जो है इसके अंदर अखलाक इकदार और हमारा तालीमी निज़ाम में तीन असलाहत हैं। पहली असलाह जो अखलाकियात है, दूसरी अकदार है, और तीसरी असलाह जो है वो हमारा तालीमी निज़ाम है।
1: जी,
3: मैं पहलू व पहलू और एक के बाद एक इसके बारे में, इसकी तारीफ के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि अखलाकियात क्या है या उसकी तारीफ क्या है। देखिए, अखलाकियात समाज का वो अंसुर है जिसकी मौजूदगी में तहजीब याफ्ता समाज की तामीर की जा सकती है।
1: जी,
3: अखलाक इंसान की वो मुनफरिद खूबी है जो इसकी अच्छाइयों को अयां करती है। सही या गलत और अच्छे या बुरे नज़रियात का तसव्वुर अखलाक कहा जा सकता है। अखलाकियात ही के पेश नज़र हम किसी काम को करने या ना करने का फैसला ले पाते हैं। अखलाकियात की बुनियाद पाकी, ईमानदारी और हकीकत है। ज़मीर की सही आवाज़ ही अखलाकियात है। मशहूर मौरख और माहिर तालीम मैकाइवर और पेज के मुताबिक अखलाकियात का मतलब उसूलों के उस निज़ाम से है जिसके ज़रिए इंसानी ज़मीर अच्छे और बुरे का इल्म हासिल करता है।
1: जी,
3: दूसरी इस्तलाह इसके अंदर अकदार की थी। अकदार की तारीफ यह है कि किसी भी चीज़ या काम की अहमियत को वाजा अकदार के ज़रिए किया जाता है। साथ ही अकदार का मकसद ये जानना भी होता है कि कौन सा काम अच्छा या ख़राब है, या फिर उस काम को करने के लिए कौन सा तरीक़ेकार बेहतर रहेगा। मैंने के मुताबिक मुल्क, ज़माना, हालात के ज़िम्न में आम मकसदियत ही अकदार बन जाती हैं। अकदार आदात और मिसालियात हमारे बर्ताव को हिदायत देते हैं। अखलाकी अकदार यानी पूरी जो टर्म है, मैं उसे मिलाकर उसकी तारीफ बताता हूँ कि अखलाकी अकदार क्या होता है। अखलाकी अकदार अच्छे और बुरे अमल का वो मयार है जिसकी मदद से इंसानी बर्ताव को काबू में रखा जाता है। और तीसरी टर्म इसके अंदर ये थी। यहाँ मैं कुछ और बताना चाहूँगा कि आज़ादी से कबल हंटर कमीशन ने अखलाकी तालीम के लिए सबसे पहले अपनी सिफारिशात पेश की थी। आज़ादी के बाद हायर एजुकेशन कमीशन जो कि 1948 में बना उसने, और उसके फौरन बाद 1952 में मुदालियर कमीशन जिसे सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, उसने भी, उसके अलावा 1964 में बने कोठारी कमीशन ने, और 1986 की तालीमी पॉलिसी के अलावा मुख्तलिफ

0: रोजगार के अलावा भी ये है कि आला से आला तालीम हासिल करना एक मोटो होता है, मकसद होता है कि हम आला से आला तालीम हासिल करें, लेकिन आला तालीम हासिल करने के बाद हमारे समाज को हमसे क्या फायदा पहुंचे, हमारे समाज को हम क्या दे पाएंगे। आपने अपनी जिंदगी का एक तय्यन कर लिया मकसद, उससे जैसे कि रोजगार से है, आपने बहुत अच्छी सा मेडिकल तालीम हासिल की है, आप रोजगार हासिल कर लिया, लेकिन आज के पीरियड में ये उमूमी तौर पर शिकायतें पैदा होती हैं कि भी डॉक्टर्स निकलते हैं और वो कॉमर्शियल हैं, है ना, वकील हैं वो कॉमर्शियल हैं, टीचर्स हैं वो कॉमर्शियल हैं, यानी वो तमाम इदारे और वो तमाम शोबाजात जिनको हम समझते थे कि यहाँ से निकलने के बाद आदमी एक वकील बनता है तो सही मानों में फैसले कर देगी, उसको सलाही सच और झूठ की तमीज करेगा, जज है तो सही फैसले देगा, या फिर एक टीचर निकल कर आता है तो तालीम में आज़ादी के वो पूरी समझ लीजिए कि जिम्मेदारी के साथ वो तालीम दूसरों तक पहुंचाएगा, अपना इन दूसरों तक पहुंचाएगा, लेकिन ये अखलाकियात चूंकि नहीं है तो हमें बुनियादी तौर पर इस पर गौर करना चाहिए, और ये चूंकि बहुत ही महदूद वक्त पर मुय्यन है आपकी गुफ्तगू, इसी तमाम पहलुओं पर इस पर गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन इस पर ये ज़रूर गुफ्तगू का एक ओपन माइंडेड यानी एक ओपन एंडेड गुफ्तगू होना चाहिए, यानी ओपन रहे कि इसके बाद भी गुफ्तगू का दरवाजा खुला हुआ है।
1: डॉक्टर सैयद रजा हैदर साहब, आप इसमें क्या और चाहेंगे कि जो सुझाव रहेंगे कि
2: देखिए, मैं बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब की जो गुफ्तगू है उससे हम लोगों को रोशनी मिल रही है, वो तमाम बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि प्रोफेशनलिज्म, हम इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, हमारा तरीका, हमारी कारकर्दगी, हमारी सोच, उसमें इतनी प्रोफेशनलिज्म आ गई है कि ये प्रोफेशनलिज्म ही जो है वो हमारे इखलाकी वैल्यूज़ को कम करना शुरू कर दिया उसने। नदीम साहब ने भी बहुत सारे हिस्टोरियंस, फलसफियों और जो हमारे फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका भी कोटेशन दिया, हवाला दिया कि जितने भी माहिर तालीम हैं उनकी यही कोशिश थी कि हम तालीम के साथ साथ जब तक अखलाकी अकदार को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम न सही तौर पे साहिब इल्म हो सकते हैं, न सही तौर पे हम एक अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। देखिए, प्रोफेसर साहब ने भी बार बार इस तरफ इशारा किया है कि सिर्फ तालीमी निज़ाम ही में अखलाकियात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का जो आव भाव है, तरीक़ाकार है, उसमें भी अखलाकी पहलू को आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो एक समाज में इंतशार है, पूरा माहौल जो है वो एक ऐसा बना हुआ है कि जो हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया, उसकी वजह यह भी है कि हमारे समाज में इखलाकी अकदार की और ह्यूमन वैल्यूज की पूरी तरह से कमी आ गई है। तो सिर्फ तालीम ही में नहीं, बल्कि समाज में, हमारे माशरे में, हमारे रहन सहन में, हमारी जिंदगी में, हमारे माहौल में, अड़ोस पड़ोस में भी इन वैल्यूज को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर हमने नहीं इस पर तवज्जो दी तो आज जो पूरी आलमी सतह पर, जैसा कि प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब ने ये बात कही कि ये मसला सिर्फ एक कौमी सतह की बात नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर इस पर डिस्कशन होने की ज़रूरत है, इस पर गुफ्तगू की होने की ज़रूरत है कि आलमी सतह पर जो एक अफरा तफरी का माहौल है ये कंटिन्यू रहेगा, इसी तरह से रहेगा। ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है, और जैसा कि इफ्तिखार उज़्ज़मान साहब सर ने भी बार बार इशारा किया कि ये आधा घंटा, 45 मिनट, ये एक घंटे का टॉपिक नहीं है, इस पर तो इतने डायमेंशंस हैं, इतनी शाखें हैं इसकी कि तालीमी निज़ाम में अखलाकी इकदार की वैल्यूज़ क्या है, घरेलू निज़ाम में, अड़ोस पड़ोस, बाहर, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ का ताल्लुक जो है वो हमारे अखलाकी इकदार से है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर बहुत गुफ्तगू हो सकती है, और मैं बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये जो हमारा पूरा अभी जो एक नया तालीमी निज़ाम आ रहा है उस पर अगर अभी से हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे थिंकर्स, ये तवज्जो उन्होंने नहीं दिया कि इसमें हमारे इखलाकी मॉरल वैल्यूज़ की किस हद तक ज़रूरत हो सकती है और किस हद तक उसको हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इस पर भी गौर करें कि एक बच्चा जब पढ़ करके निकले तो वो हर एतबार से इतना मैच्योर हो कि वो अपने मॉरल वैल्यूज के साथ भी निकले और अपनी अच्छी एजुकेशन के साथ भी निकले। यही वो चीज है जिस पर हमें बहुत ही संजीदगी से गौर और फिक्र करने की जरूरत।
1: जी डॉक्टर नदीम साहब, हम चाहेंगे कि आप इखलाकी इकदार की जो तालीम में क्या जरूरत है इस पर ऊपर आप बात करें।
3: देखिए, अखलाकी इकदार की तालीम हर बच्चे के लिए जरूरी है, चूंकि तालीम का मकसद चौतरफा तरक्की है, लिहाजा रहम करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, बड़ों का एहतराम करना, کسی کا قتل نہ کرنا، سب کو اپنے برابر سمجھنا، سب

0: की मदद करना, किसी की बुराई ना करना, ये सब अखलाकी अकदार कहलाते हैं। तमाम मजहबी किताबों में भी यही बातें बताई गई हैं, जिसका मकसद लोगों में अखलाकी खूबियों को पैदा करना है, जिसकी वजह से वो अपने आप को इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे की तालीम के अलावा उसके अकदार में भी वसत होती रहती है। ये अकदार उसे सिखाते हैं कि उसको समाज में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के अलावा दीगर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। स्कूली किताबों में मौजूद कहानियों और दीगर वाकयात के जरिए इसके अकदार को निखारा और संवारा जाता है। ये तय है कि हर किसी मुल्क का तालिब इल्म अखलाकी अकदार से दूर होगा तो उस मुल्क की तरक्की पर इस बात का मनफी असर पड़ेगा। मगर आजकल हमारी जिंदगी से ये अखलाकी अकदार खोते या कम होते जा रहे हैं। आज हम अपनी खुदगर्जी के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हैं। ये इस बात की जानिब इशारा करता है कि समाज की हालत कितनी बदतर होती जा रही है। चोरी, डकैती, कत्ल, रोड रेस, मॉब लिंचिंग, जालसाजी, बेईमानी, झूठ, दूसरों की बेइज्जती करना वगैरह अखलाकी अकदार में आई कमी का ही नतीजा है। हमें चाहिए कि अखलाकी अकदार की कद्र व कीमत को न सिर्फ पहचाने बल्कि उसे अपनी जिंदगी के साथ साथ तालीमी निजाम में भी खास दर्जा देने के लिए कोशिश आ रहे
1: शुक्ला साहब जी, हम वहीं आ रहे थे। हम चाहेंगे कि आप ये जो हमारा तालीमी निजाम है इसको बेहतर किस तरह हम बना सकते हैं जिसमें अखलाकी अकदार भरपूर हो।
2: देखिए, फिलॉसफी के में एक ब्रांच होती थी जिसको एथिक्स कहते हैं,
1: जी
2: और ये एकेडमिशियंस जो हमारे पुराने प्लेटो और अरिस्टोटल हैं, तो इनके जो मकतब थे, एकेडमीज थी, उन एकेडमीज में एक, और प्लेटो का आपको मालूम है कि उसके मकतब में ऊपर जो सबसे पहले दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ था कि जिसको रियाजी से दिलचस्प शौक ना हो वो अंदर दाखिल ना हो, जिसको रियाजी से दिलचस्पी ना हो, शौक ना हो, वो अंदर हमारे मकतब में दाखिल ना हो। रियाजी को उसने एक जाब्ता अखलाक माना था। तो अरिस्टोटल के यहाँ के एकेडमी में भी फिलॉसफी में जो दूसरे और मौजूदात थे उसमें एथिक्स भी मौजूद था, और ये एथिक्स का मौजूद फिलॉसफी में आज भी है,
1: जी एथिक्स का है।
2: एथिक्स का। तो अगर हम ये कर लें कि जैसे कि 19th सेंचुरी के बाद से अलग अलग जो लूम थे, लूम की इंडिविजुअलिटी जो है वो टूटती चली गई, जैसे कि फलसफा था, फलसफे में एस्थेटिक्स भी थी, वो उसको अलग कर दिया गया, जैसे कि एथिक्स थी उसको अलग कर दिया गया, जैसे कि इमरानियात थी उसको अलग कर दिया गया। इस तरह से अलग अलग जो ब्रांचेज बनी हैं, तो वो ब्रांचेज इस वजह से कि हर एक ब्रांच अपनी एंटिटी में एक पूरा मबसूत निज़ाम रखती है, तो एथिक्स का पूरा एक निज़ाम है। अगर हम ये कर लें हमारे तालीमी निज़ाम में कि एथिक्स को कंपलसरी कर दिया, अगर फिलोसफिकली करें, और फिलोसफिकली के अलावा हम मुख्तलिफ मजाहिब के जो सहाइफ हैं उसके का निचोड़ अगर पेश कर सकें, निचोड़ है ना, उस निचोड़ को पेश करें, और ये चीज़ें इनडायरेक्टली होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट ये नहीं हो कि हम आपको ये सिखा रहे हैं। जैसे कि हम डिसिप्लिन का लफ्ज़ है, ये कि पहले जो तालीमी निज़ाम था उसमें एक डिसिप्लिन के लिए सख्ती भी की जाती थी।
0: एडलिज्म में
2: हाँ,
0: खास तौर पर
2: तो सख्ती करने की वजह से भी आदमी से हम ये तसव्वुर कायम करते हैं, ये उम्मीद कायम करते हैं कि कोई सीखेगा, लेकिन नफसियाती तौर पर हमें नफसियात को भी सामने रखना चाहिए कि आदमी सीखता कम है और डरता ज़्यादा
0: करता
2: है।
0: ज्यादा।
2: इसलिए अगर जहाँ सख्ती होगी तो वहां वो, अगर ये डायरेक्ट के हम अखलाक सिखा रहे हैं तो कोई नहीं सीखेगा। उसको हमें इनडायरेक्टली अपने किताबों में, मसलन बोस्तान देखिए, बोस्तान का मतलब ये है, बोस्तान की जो कहानियां हैं सादी की, वो सारी कहानी एक खास अखलाक पर खत्म होती है, एक अखलाक की हिदायत पर खत्म होती है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि मेरा मकसद जो है अखलाक की नुमाइंदगी है और अखलाक को फैलाना है, बल्कि अखलाक जो है उसके अंदर मुजमिर होता है, उसके अंदर वो इम्प्लिसिट होता है। ऐसी तालीम, ऐसी कहानियां, ऐसी नज्में, ऐसी वो होना चाहिए जो कि बच्चों को शुरू में भी वो बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्टली आहिस्ता आहिस्ता अखलाक की तालीम भी मुहैया कर सकें। पहले की किताबों

0: में, अगर आपको याद हो कि इस्माइल मेरेठी की किताबें थीं, इस्माइल मेरेठी की किताबों को सामने रख लीजिए, वो आप गौर कीजिए, आप देखेंगे कि उसमें बच्चों के जहनी सतह को भी सामने रखा है, नफसियाती सतह को भी सामने रखा है, और इल्मी सतह को भी, कि भाई वो कितना जानता है बच्चा। तो अब वो बच्चे को जो भी ऐसी कहानियां जो कि खालिस लुत्फ के लिए, बच्चे के इमेजिनेशन के लिए या के बच्चे की क्रिएटिविटी उभारने के लिए कुछ नज़में हैं, और कुछ नज़में कि जो ज्यादातर अखलाकियाती सतह पर
1: सतह पर
0: खुद
1: नजर
0: इस्माइल मेरठी ने कही थी वो नज़में
1: जी
0: जी। तो इस एतबार से जो नज़में, जो अदब है हमारा आज का, उसे बच्चों के लिए ऐसा अदब भी खल्क करने की जरूरत है।
1: दरेंतस उर्दू सर्विस कना प्रोग्राम लंग ने चित पिन मीडियम वेव गदिवा आकाशवाणी करगिलिन वास्पोंग यमी तो सो दुश्बी छन्नो कजता आकाशवाणी दिल्ली ने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर रिलीवेट रिलीवला डाम भासत

0: नमस्कार, पेशे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया। लोकसभा की भी कार्यवाही जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएसएवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से आज नई दिल्ली में बातचीत कर उनकी असाधारण उपलब्धि और दृढ़ संकल्प की सराहना की। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर 14%, मध्य प्रदेश की द्वितीय सीट पर 32% और बिहार के बांकीपुर सीट पर लगभग 12% मतदान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेना ने कल रात ईरान में हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मुकाबला खेला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए हम पेश करने वाले हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए हम पेश करने वाले हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशन जिनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहां भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग के मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता
0: जी।
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं
0: जी। बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पे, और कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर। और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहां से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहां आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
0: जी।
1: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं शीज दुकान वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
1: नहीं देखिये, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो

0: इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूं ये बहुत डिफिकल्ट है. इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है. ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास यू नो जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन. अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है.
1: क्या बात है, क्या बात है. जितनी भी आर्मी वाइफ्स, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम. कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है. जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ. आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं.
0: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है.
1: अच्छा.
0: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं. बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं. इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे. दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है. इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं.
1: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं. तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर. ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट डन एज फार एज, जहां तक मेरे लिए बात है, भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं. अब वेल मुझे मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था.
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं.
0: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे. पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था.
1: अच्छा.
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा.
1: वाह क्या बात है, क्या
0: मतलब आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं.
1: हाँ.
0: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई.
1: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई. मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ. और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है. हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो जब भी वो दोस्त मिलते हैं.

0: उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है। जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं, कर्नल साहब मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था? क्या घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाएं।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं, बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं ज़रूर मानूंगा, बट एट द सेम टाइम ज्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी, कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था, वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहाँ तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हासिल के चलो मैं भी दे लेता हूं, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया और मानिए मेरी बात, 7ों का क्लियर हो गया,
0: वाह,
1: 7ों क्लियर हो गए, लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। 7ों के 7ों एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
0: अच्छा।
1: 8 के 8 ने आईआईटी के एग्जाम पर जोर लगाया और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने, और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
1: वो हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास तीन चार चार हम इकट्ठे थे, एक होता था एनसीसी वाला तो वो बहुत ज़्यादा तेज था, एक होता और होते थे वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था, तो हम 4 थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं, तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहां हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा, और देखा कि फाइनली वो एग्जाम दे रहा है,

ऐसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसे कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन

0: जब वो एग्जाम दे रहा था तुमने कहा चलो भाई हम भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और. सो मुझे लगा कि इस एग्जाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्जाम दे दिया. और एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉर्पोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया. और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया. अच्छा. और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए. सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई. और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्जाम क्लियर हो गया है. तो वहां से कॉल अप लेटर आ गया SSB का. तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है. जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां गए, वहां पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया.
1: अच्छा
0: अच्छा. अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ GTOs वाला जो काम था वो भी आ गया. तो वहां फिर लाइन अप लगी. तो वहां पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले. तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ.
1: अच्छा.
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली. सो आई हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा. अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई. और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस. मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता.
1: क्या बात है. अच्छा कनक साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी. अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन जैसे आपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे. आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से ऊपर शैतानी करते, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार. क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में? सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी.
1: अच्छा,
0: बढ़ चढ़ के
1: क्या?
0: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर निक्कर पहनकर बारिश में भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया.
1: वाह.
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे. अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो. हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे, तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूं, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम. नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी.
1: अच्छा.
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी. पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है. सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी. मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ.
1: अच्छा.
0: कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए.
1: क्या बात है. वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया. और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया, और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है. तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर

0: हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे, जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहां रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूं तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नजर आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो तू करेगा। सो दैट इज द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूं कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूं। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहां हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें यह नजर नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे। अच्छा। आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माय फादर वाज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई।
0: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी है। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहां से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: पहला डिप्लॉयमेंट कहां डिप्लॉय किए गए?
1: ये मेरी बदकिस्मती है। अच्छा। कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ।
0: अच्छा।
1: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा।

0: यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइड्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई राइड नहीं हुआ मेरठ में। तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूं। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहां तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे ऐसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे आप खुद एक डेस्टिनी लवर हैं कि किस तरह से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उस तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशन मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा।
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
1: वाह क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग, आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? करना
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं। मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे, और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
0: देखिए मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएन के रहेगा श्रीनगर जी, क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहां शादी हो गई। सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हमारी श्रीनगर में शादी हो गई।
1: वाह क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
0: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठां करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड।
1: क्या बात है,
0: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब यहाँ से तो पूरी काया

0: पलट हो गई, और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा। दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा,
1: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो उस सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए, मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528वां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
0: शब्द नहीं है, निःशब्द हूं, एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूं जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे, वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा हो

0: देश देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है. आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आईज. किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहां साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए. आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन. हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं. एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
1: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ.
0: अभी तक
1: वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है. वो मेरे दिमाग पर अभी भी है. और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है. इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी. और जहां तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई हैव टू रीलिव. मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूं. मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी. एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है.
0: आपने आज निःशब्द कर दिया. आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं. कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा. और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं. इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं. क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं. बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है, और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी. अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में, मेरा इसमें अहंकार नहीं है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो. देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए.
0: बहुत खूब. यहां पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूं, जो मैं दिल से चाहती हूं पूछूं. एक वो पल जहां आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहां पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहां पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहां आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है. मैं जानती हूं कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजन लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं. अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल. दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा. तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली

0: जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर
1: क्या?
0: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो ओपी ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
1: क्या बात है।
0: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहां कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
1: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद लिख भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज कामरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल बवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
0: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

0: درينتس برجي خبر لنجن نشوت بين ميريم ويبغاتيو اكاشواني كرجلين واصف في دوغت الصوت غنا فت سونزو كاستا دكتور نينا سونكاري كنا ارتلوكسي هاوري غاني نزد
1: प्रकृति के बड़े उपकार हैं हम पर। अनेक प्रकार की शाक सब्जियां उत्पन्न करती है हम सब के लिए, लेकिन मनुष्य है कि उसे अपने आसपास बहुतायत में उपलब्ध होने वाली उन शाक सब्जियों की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता जो बिना किसी हानि के हमारी अनेक बीमारियों को निर्मूल करने में सक्षम हैं। प्रकृति जिन शाक सब्जियों को उदारता पूर्वक उत्पन्न करती है इन्हीं में से एक विशेष उपयोगी वस्तु है गाजर। गाजर को उसके प्राकृतिक रूप में ही अर्थात कच्चा खाने से ज्यादा लाभ होता है। गाजर स्वाद में मधुर, कसैली, हृदय के लिए हितकर, रक्त को शुद्ध बनाने वाली, पुष्टिवर्धक, दस्त को बांधने वाली, मस्तिष्क एवं नस नाड़ियों के लिए बलप्रद है। ये अफारा, बवासीर, पेट के रोगों, सूजन, खांसी, पथरी, मूत्रालपता तथा दुर्बलता का नाश करने वाली है। गाजर के बीज पचने में काफी भारी होते हैं। कैल्शियम और कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण छोटे बच्चों के लिए ये एक उत्तम आहार है। गाजर में आंतों के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करने का अद्भुत गुण है। इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है, अतः नेत्र रोग में भी लाभदायक है गाजर। गाजर रक्त शुद्ध करने वाली है। 10-15 दिन केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार, गांठ, सूजन तथा पांडु रोग जैसे त्वचा के रोगों में बहुत लाभ होता है। गाजर में लौह तत्व भी प्रचुरता से पाया जाता है। खूब चबा चबा कर गाजर खाने से दांत मजबूत, स्वच्छ और चमकीले होते हैं तथा मसूड़े मजबूत होते हैं। गाजर के रस का नित्य सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। गाजर का सूप दस्त होने पर लाभदायक होता है। अरुचि, अपच आदि रोगों में गाजर के रस में नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर पिए बहुत लाभ होगा, लेकिन ये प्रयोग 2 माह तक अवश्य करें, तभी आपको लाभ दिखाई देगा। पोषक तत्वों के लिहाज से गाजर एक अत्यंत समृद्ध खाद्य पदार्थ है। ध्यान रहे, गाजर को छीलकर या खुरचकर नहीं खाना है, क्योंकि गाजर के पोषक तत्व छिलके के नजदीक ही होते हैं, जो छिलका खुरचने पर बाहर निकल जाने से शरीर को नहीं मिल पाते हैं। गाजर को बिना छीले केवल धोकर साफ करके उसका रस निकालकर पीने से बहुत लाभ होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो गाजर का रस बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत उपयोगी है। गाजर चबाने से मुंह में लार ज्यादा बनती है। इससे जरूरी एंजाइम, खनिज पदार्थ और विटामिन मिल जाने से भोजन शीघ्र पच जाता है। यदि भोजन करने के तुरंत बाद एक गाजर धोकर खूब चबाकर खाई जाए तो अन्य लाभों के अलावा मुंह के कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं तथा दांतों के मध्य छिपे भोजन के कण भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रयोग से दांतों का हिलना, मसूरों से खून आना भी रुकता है। गुर्दों और मूत्राशय को बल प्रदान करने में गाजर का महत्वपूर्ण योगदान है। गाजर का ताजा रस अल्सर और कैंसर जैसे रोगों में कमी लाता है।

0: ये सभी प्रकार के संक्रमण को रोकने में मददगार बनता है। कुछ लोगों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे में एक प्रयोग करके देखें। गाजर के रस में पालक का रस और थोड़ा नींबू का रस डालकर पीना चाहिए। इस मामूली से उपाय से कब्ज दूर हो जाता है। गाजर का उपयोग कच्चा खाकर, पकाकर या उबालकर अथवा सूप बनाकर या फिर रस निकालकर किया जा सकता है। इतने सारे लाभ हैं गाजर के, आप भी उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए।
1: Darientes walafu zachasi fankies korla erdeluxu haguri ganyani jyot pin doctor Nina Sonkarikana. Miremev gadi akashwani kargilin waqsu fide otu sodgan aminer sumchu songa sonsu kasatar sahmas tot karigan yennaset.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ଦରିଆ ଦେଶ ସଖମା ସତକାରୀ ଗଙ୍ଗି ଜ୍ୟୋତପିନ ମିଡିଙ୍ଗ ବୈବଗଦି ଆକାଶବାଣୀ କରିଗିଲିନ ୱକ୍ସ ବୋ ଖବର ଉନ୍ନି ଛନ୍ଦୁ କସତା ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ଖବର ଉନ୍ ରିଲିଭ ରିଲିଭ ଲା ଡଙ୍ଗ ଭାଷା
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत

0: राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मीटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मीटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मीटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुप जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,370 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram

और जोवी डॉट इन पर लॉग इन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। मजीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल पीएम श्री स्कूल जेएनवी खुम्बतंग कारगिल के ऑफिस से राबिता कायम करें।

0: अरे
1: अरे अरे तवज्जो हटी तो जेब कटी।
0: ना ना मेरी मेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड।
2: तो
0: डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट मिलेंगे तभी के तभी।
2: पर पैसे तो गए।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए मत से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। आरबीआई कहता है कि
3: जानकार बनिए चौकन्ने रहिए।
4: ब्रांसी मन मा नरमो ची सख जहर इन यंग जहर मन मा गा खंटे ची सुन गंग मा शफा इन। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम।

0: कैसे?
1: दो ना आती, जैसे कि दांदरी आता नॉलेज मत खन अनेसा, मतलब आती गा मत खन अनेसा बिचारे खाची रस यूज बने थे, कपड़ा यूज बने थे, तो उधर तो सारे अलग अलग सामान हो चीन यहाँ आती फिल्ला यूज भी फिल्ला,
0: कैसे
1: तो उधर ने अलग अलग बेनिफिट हो चीन या नुकसान ची हो चीन, दो
0: कैसे
1: आता प्रॉपरली छूत पर गोशिन की आते दू का तो यूज बचिन जरे आते सैनिटरी पैड्स अच्छी दे आते पैड्स यूज बना का, तो उदो आते सम घंटे फिल्ला जक चीन
0: कैसे
1: ओदों आता पूरा पता उमर गोशिन, जैसे कि आते सैनिटरी नैपकिन जकना का तो ओदों आता 4 to 6 hours से फिल्ला जकचा,
0: कैसे
1: ठीक मींदो प्रॉपरली आते दियो चेंज बिन दुकचा, 4 to 6 hours हमेशा चेंज बिन दुकचा, या
0: कैसे
1: दैट्स वाज रिंग आते जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप यूज बना का तो ओदियां सिफत ची ओत खुशियत की, जैसे कि ओदों आते 12 hours रे 12 घंटा जक पाइन चीन,
0: कैसे
1: दोना यंग चिचियों चीन जैसे कि टैम्पोन जेंचिक ओदो ना मतलब द मेंस्ट्रुअल कप ना पैड सिर किल्ला सुख शिकलास बचिन मैं,
0: कैसे
1: जैसे कि ओदे ना लेकिन आता रेगुलरली ओदो ना 4 to 8 hours सिर गम ना चेंज बिन दुखचा, ता मेंस्ट्रुअल कप ना टैम्पोन से पैड से अच्छी आता देने मतलब डिफरेंस
0: जी
1: चीची हो जर
0: उन्होंने
1: बनना कदो आते ओदो छुचुचा,
0: कैसे
1: जैसे कि आता मेंस्ट्रुअल कप यहाँ फायदे देना दुख की कि इजीली अवेलेबल थो बिंदु आता हर
0: कैसे
1: एक जगह अच्छा ना कतों आता इजीली थो बिंदु, ठीक बिंदु अच्छी बाकी देना कप्स या टैम्पोन जन्ना दारंग दांग देरिंग जो नए नए प्रोडक्ट कहते हैं सुन सुख और दे फिला अवेयरनेस दुख मिंदुक
0: दुख उन्होंने
1: यूथ मत पना कहते हैं जस्ट अवेयर बचा कि गा फायदा दोगा नुकसान दुख तचा, जैसे
0: कैसे
1: आते पैड्स यूज बैत पैड्स पे मुश्किल चिदू छेंदु कि आता ओदो जल्दी गंग मत सुख छेंदुक
0: उन्होंने
1: हैवी सुख फुलनेस सुख छेंदुक छा ना ओदो एक तो ओदो छाछा दूसरा शिफ्ट छेंदुक तको बुलिक बल्कि चनगाता आर देर डुल बना का तो मतलब हिलाई छिदा
0: छेद
1: मतलब
0: उन्होंने
1: वो हिलेगा ना इधर से उधर जाएगा,
0: कैसे
1: ठीक मीन द फिजिकल एक्टिविटी भी एक्सरसाइज का तो बना का तो ओदो आता तक पब्लिक मुश्किल छेद, या ना जरे ना स्किन रैश जैसे आते लॉन्ग टर्म ओदो जखना का तो
0: कैसे
1: ओदो स्किन रैश जरे या इन्फेक्शन छे ओदे एक कारण छे, तंग आते टैम्पोन या कप्स जरना का तो जैसे कप्स ला फायदे ची दुख जबाना ओदो एक तो होल बात सो 20 to 30 ml मेंस्ट्रुअल ब्लड पो,
0: कैसे
1: ठीक मीन दो अच्छे दो ना ओदे फायदा ची दियो दूर जबाना की आते ओदो 12 घंटा आता जख पंगेन,
0: कैसे
1: दो ना अगर कहता आता स्विमिंग बचा उतना ख्याल व्याल तो अच्छा उतना स्वामिंदा,
0: कैसे
1: दो ना यहाँ आता विग्रेस एक्सरसाइज का तो बच्चा उतना तो ओदो उन बच्चा ना कहता आता टाइम कब से ज़्यादा फायदे तुक्षिक कब से ज़्यादा फायदा दुख पाया,
0: कैसे
1: अच्छा जबाना एक तो आते एक तो नंगोस लगाते तख्स कप्स को
0: कैसे
1: तख्स सिर गया ना कहता आता एक तो बाहर ना थूं मामित
0: ना
1: ब्लड जहाँ फ्लूड पर आता मेंस्ट्रुअल ब्लड पर अगर कलेक्ट छाने का तो आता बाहर ना बहुत से आयो मांगे मतलब छान उदो छाने का तो आता स्विमिंग बा एक्सरसाइज बा उदे फिल्ला दियो फायदे दुख पाया
0: कैसे
1: छाना, तो उदो आता अब तुम आते 10 साल सब पे दियो यूज बा इंचा सों दे
0: ना
1: मतलब उदे उदे एक चीज़ फायदा सो, दो ना मेंस्ट्रुअल का भी फायदे दियो दुख की एक तो इको फ्रेंडली दुख,
0: कैसे
1: ठीक मीन दो अच्छे दो ना पहने मत खान सा जैसे कि 10 साल में फेरा चीची क्यों माना का
0: खोना
1: तो
0: नहीं
1: चम से
0: पाना
1: फायदा सोंगा था मैं ना,
0: कैसे कैसे
1: एक तो बाहर ले वेस्ट मटेरियल लांग ज्यादा माबिन
0: नवीन होना
1: माबिन दे दना जरे यंग टेम्पोन जान चोचिन ता
0: कैसे
1: टेम्पोन ना यंग दना चोक मेंस्ट्रुअल कप जी चोक ला यंग पैर जी चोक हल्की रश चोक चोचिन मैं ता मतलब फाइबर चन मटेरियल चोचिन
0: कैसे
1: फाइबर चन मटेरियल चोचिन वो दो ता इजिली इंसर्ट बाई इंचिन
0: कैसे
1: दोनों, लेकिन ओदे नुकसान चिची दियो दूर जबाना कि अगर कच्चे वेजनल ड्राइनेस छाते छा न कतो ओदो ज्यादा लॉन्ग टर्म यूज न लूस न कतो नंगोस ला तो ओदो बलिक वेजनल इरिटेशन छचिन सुख पे
0: कैसे होना
1: ड्राइनेस की वजह का, दोन अगर यारिस माना मंगमो टाइम दियो माना जक से नंगोस ला माना फिंग मा फिंग न कतो एक खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन छ जाचुन सु, जैसे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम झांचिक जर
0: कैसे
1: में यों छिन सुख ओदियां ची छचिन सु जबाना एम बैक्टीरिया का तो भी दान छिन सु स्ट्रेप्टोकोकस फिकल स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस ओदो इस एक टॉक्सिन ची प्रोड्यूस बचिन सु ओदो छनंग आती बॉडी का मन हार्मफुल इफेक्ट हो छिन सु ओदे
0: कैसे
1: छन जो पैड्स कप्स या टैम्पोन से ज्यादातर मतलब गतिस दोनों आती मतलब गता गा यूज बाय इंच जबाना रा कंफर्ट लतार गोशिन
0: उन्होंने
1: रा लाइफस्टाइल पलता छ ओदे हिसाब का रा इस यूज बचा
0: कैसे
1: ता बाकी मन इफेक्ट मेंस्ट्रुअल कप या पैड्स या टैम्पोन सुस गत्सो यूज बचिन जना दो रा लाइफस्टाइल का पर्सनल चॉइस से करता छ दोनों
0: कैसे
1: एनवायरमेंटल गोल्स पलता छ कि गति फिल्ला गा ठीक दुख जरे
0: उन्होंने
1: छु तेजो मतलब गति सोसाइटी पहला पहला ना मन सब पूछना चले
0: उन्होंने
1: चीज
0: कैसे
1: या नेला आदा

0: birirsi onsu zere mana nak nak ben usde. Ta darina with time change son de mentality me sai change son awareness zyada son. Chana ka to dare matlab dena bacha agar ka to su ani jis matlab use ben yut na ka to dana kapra chalo khon pene met khon khyo me incha met na ka to kapra agar ka to use basna chok khru sena ya apna sunlight ni me atang sas kam shucha ye ni ki shade chanta se matlab sil chanta na ka to odi ka yut khan jara sim gangma dane ka dukse dane ka yang khole yang yang infection che chan sa chuchin do basna sunlight yang tang mana sunlight nga tang ek protective mechanism chu sin de tang tang odo matlab वो क्या करेगा वो देखो खान बैक्टीरिया गांव में सत्तांचिन मतलब
1: कैसा छुट्टा जो पेट में ना आम गाता यूज़ बेथा दरे गाता बमुन लाखा शिक्दी बारे अम पता मेट में ना माना देखा यूज़ बचाओ माना जिसमें चोशी चिबा से तंग मात मतलब गाता दूध चिबा से खुरे थे लासम खान चोशी माना खाशिक पता यों मिनट पनी दुई यूज़ बोगा चोशी गुट गाता कंफर्टेबल चिक छाता या गा चोशी देश को लचिक जितना
0: तो मेंस्ट्रुअल कप जबाना का तो मेंस्ट्रुअल कप एक बेल शेप सामान चौमत या जैसे स्ट्रक्चर चौमत जोलधान चौमत सिलिकॉन झांचा सिलिकॉन सबसे लीस्ट इरिटेंट दो ना लीस्ट इन्फेक्शन छे एक कप चिनम जोलधान चौमत छुता जो छा नगा तो जैसे कि पैड ना टैम्पोन सवाज एब्जॉर्ब बाद ब्लड पो आता मेंस्ट्रुअल ब्लड यों खान पो दोस थूंग से तांदे ता मेंस्ट्रुअल कप पेंची छा जम दियान सिर्फ जस्ट कलेक्ट बात ठीक दुआ ता ओदे फायदा छी दुख जबाना एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरमेंटल फ्रेंड environmental friendly chana ka to ek person is jaise ki ane chik cheez roughly 11000 se 15000 tak apne lifetime mein menstrual pad use bas bachin chuta to dio chi duk sabane menstrual ka bhi fayda ngate 10 saal ek bar use bayan chana ka to ngata sam se fayda so zyada wastage ma bing de ma bing chunda dusra economical इकोनॉमिकली अच्छी छात जबाना जैसे कि आते एक बार परचेज बस एक बार सामान पहुँचते न्यू ने देना सामान पर 10 साल यूज भाई थे अच्छा ना आता इकोनॉमिकल लगते पहने में ना का तो खुश देना मेंस्ट्रुअल कप देना क्रीम चिक यूज भाई 10 साल सब दोनों बॉडी सेफ चीज जबाना दिखा ना ब्लीच ता समय मत ना दिखा परफ्यूम ना सेंटेड चंगा चमिन एक सिलिकॉन कप चौचिन जो अति बॉडी है ना इरिटेशन ना ड्राइनेस चाँचा चुचा में छाना आता हूँ दो एक चीज़ फ़ायदा सो दोनों कंफर्ट कंफर्ट छाना का तो मतलब जैसे कि अगर आपको यूज़ करने आएगा तो आप उसको मतलब आता हूँ कैरी भाई चिन मैं लेकिन दी फिलहाल प्रॉपर टेक्निक क्वेश्चन दोनों प्रॉपर हाइजीन क्वेश्चन ठीक बिंदु है जो तो आते आप गचो यूज़ बचिन दोनों आते जो गचो मेनटेन जाचिन जबाना सबसे पहला प्रिपरेशन ही फिल्ला आते छी बार क्वेश्चन जब ना 5 से 10 मिनट ही फिल्ला मेंस्ट्रुअल कप पो छियं खोल चुचा
1: कैसा
0: ठीक दो जो ओदो खोल चुचा दिगा ना ओदो खोल चुचा रिगा अपना लखपा रहा लखपा प्रॉपरली क्लीन बचा साफ बचा छियं तां से साबुन वाबुन तां से खुरुचा दिगा ना इंसर्ट गचो बचिन जब ना जैसे कि आता मेंस्ट्रुअल कप पो जो अधिन एक चुक शौचिन चीज़ बचो जैसे कि दो अच्छे तो एक तो आते तक तक सरगर्म ना आप आते पिंचा का जो है पिंचिन पिंमा छोटा रोज ना ता पिंचा जो पिंचिन जब ना सीधा आते थन में थन चा और दें ऑलरेडी सक्शन वैक्यूम ची क्रिएट सॉन्स यो दे अच्छा ना और दो जस्ट रिलीज बेफिला जस्ट प्रेस बचा बेस पिका जस्ट बेस पिका जो प्रेस बचे और दें ना यो थन प्रेशर ऑलरेडी रिलीज है चिन सक्शन पर रिलीज है ना दिखाने ते पुल डाउन बचा बस ना यंग आता रीयूज बाय इंच फिर आते सोप चिन बुकरु सना यंग नेक्स्ट टाइम यूज बचा नहीं यंग 5 to 10 मिनट्स से फिर यंग बॉयल बचा ना यंग यूज बचा
1: कैसा कैसा नहीं तादी गतां गती मुस गतां दारे गतां पता सोंसे गती ती चुन्जे प्रूनिस गती चुन्जे वुमन दारे यंग एज एंड कन दुनिस काफी यूज बसे गतां जेर इन दुकी दुमन कंफर्ट चिन दुकेरे नी गतां जिक्स माजिक्स बात हस मत हस बंग गते चंग प्रैक्टिस बसे दुन गते स्कूलचा हा ताकि गतां दिउ गतां एक बार गतां एक एक चोक मनमियन तो गया दुन गते सर दुमो बसे दिका दे पैकेट पे गतां बीस यंग चिन गतो यूज बचिन जेरे दुन अगर कल कोल ना पेड़ सुन बचे दूंगा मन कम्फर्ट आंग सुंग यहाँ इकोनॉमिकली सस्ता सुंग पेड़ चम छिकती जिंदगी पेड़ यूज बिंदुता हर महीने चम छिकता यूज कर अगर कदू दो टाइम छिके चेंज माबा ना स्किन रेशेस छेद पूरा दिन भर जगन दुख दे हा दे फिला अगर कतो दून ज्यादा टाइम कतो यूज बिन चेई माबा दुख ना कतो गति गति का

0: तो वो क्या करेगा, हमारे जो वेजाइनल पीएच है उसको डिस्टर्ब करेगा।
1: कैसा?
0: छिपिंदा ओदो छाना का तो आता और बैक्टीरियल वेजिनोसिस जहाँ इन्फेक्शन पौधे ग्रो छछन
1: कैसा?
0: ओदो छाना का तो आता ओदो स्ति बॉडी ला नुकसान था छन तंग आता गचो पता छत कि गादी इन्फेक्शन पसों से जरे
1: सोसो ना सिम्टम्स ही
0: सिम्टम्स
1: गाता
0: को आता गचो पता छत कि गादी इन्फेक्शन पसों से जवना एक ग्रेश कलर वाइट डिस्चार्ज हो छन।
1: कैसा?
0: ठीक मिंदो जो ओदोला मछली टाइप ठीक मियो मता मछली स्मेल छ
1: ओ
0: ओदो
1: कैसा
0: चोक स्टीमे गयो छन ओदोला
1: कैसा
0: दोन
1: कैसा
0: हल्का इचिंग छ छन। ठीक मिंदो
1: कैसा
0: जो तो ओदो फिर ऐसे सिम्टम्स अगर आएंगे तो फिर आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। ठीक मिंदो जो देखा ना यहाँ इन्फेक्शन जो चिन जैसे कैंडिडियसिस जरे यीस्ट इन्फेक्शन जैसे दोनों आते हैं वो दो यहाँ ध्यान सो लॉन्ग टर्म या रिस पैड जग सैनिटरी पैड जग या टैम्पून जग्स काफ जग दोन मन काफ़ी टाइम लंबे टाइम के लिए जगना का तो वो दो इन्फेक्शन छचिन वो दे इन्फेक्शन पहुँचा चिन जैसे बैक्टीरियल यीस्ट इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियसिस जब दो लसो
1: कैसा?
0: तो वो दे सिम्टम्स पूछी हो चिन जब ना थिक वाइट जैसे कि पनीर सुखमे हो मता
1: कैसा?
0: चीजी डिस्चार्ज पूरा मोटा वाइट कलर डिस्चार्ज हो वो दो नंबो खतरनाक इचिंग छाचिन रेडनेस छाचिन दो ना स्क्वा छाचना पास तांसना बेर्श बेर्श चाय बेर्शिन।
1: अच्छा
0: ठीक तो जो
1: कैसा?
0: एक तो और इन्फेक्शन पूछाने का तो देखना छाचिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहे जैसे कि आती यूरिथ्रा मन क्लोज हो मत वेजाइनल ओपनिंग नंबो। ठीक
1: ना
0: मिंदा दो ना मीन स्पेस ला आती यूरिथ्रा छंसे हो मत
1: कैसा?
0: एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर से हो। ठीक मिंदा तो ओदे यूरिथ्रा ओपनिंग पना वेजनल ओपनिंग पो नजदीक उत्पी वजह का ओदे इन्फेक्शन पो यूरिथ्रा अनालता सचिन।
1: कैसा?
0: ठीक मिंदो आती पास तो में जगह अनालता सचिन छा ना ओदे मीन लाची ओदे अनिल लाची सिम्टम्स हो चिन जबना बार बार गो अछार गोसा ये ना पास तो ना छिकचा दो ना गंदा स्मेल चोचा
1: कैसा?
0: ये ना तो ये उपयोग जरमोचा देखना यहाँ इन्फेक्शन चिता मन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ची कॉम्प्लिकेशन ची चांस इन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जब दोला
1: कैसा?
0: तो उदो सुस कॉज बाद जब ना यहाँ स्टेफाइलोकोकस ऑरिस स्ट्रेप्टोकोकस जहाँ यहाँ बैक्टीरिया यो मत तो अगर लॉन्ग टर्म आते जहाँ दाना टैम्पोन्स पर देना जक्स 8 आवर्स से ज़्यादा जक्स जखना का तो उदो ने से एक टॉक्सिन शिक रिलीज बचन शुद्ध
1: कैसा?
0: मजबूत जो तो उदो आती बॉडी ले बना मन खतरनाक जरमो छिन मतलब पेशेंट ला फिर सडन फीवर हाई ग्रेड फीवर छछिन बुखार छछिन खतरनाक बीपी कम छछिन रैश छछिन वॉमिटिंग छछिन। ठीक मिंदा उल्टी
1: कैसा?
0: उल्टी रियो छा ना ओदोन मन खतरनाक इन्फेक्शन जी को छछिन अगर नाते लॉन्ग टर्म। ठीक दो जो
1: बस यारे से दी रिस कैसा था आखिर विकंगा जरान दिया हो जुट की गति दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कूल ला गत खुशी बस गते साफ बसे दुपर उशीन गता आम गति दातु गता जुआ सों से ना ता ना पीरियड सुत पजिर गते मेन गते साफ बसे तोहरत बस मते है पीरियड सुत पजिर खदमन मबाय ओं दुता ना हाजिरे दो चुक्षी बिंदु की गता ओदे चनंग तोहरत नय चुक्स लंगते तुन चक क्रूसे जक्चे समची इंपॉर्टेंट
0: तांगातेस जैसे कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स ऑन सिंस है नांगातेस माने साप माने मां बाद उक हफ्ता रे रे माने माने मक्षो दिन
1: ओ ना ना
0: दियो माने
1: कैसा?
0: गाला दिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस पूछी इन जबना हमेशा रेगुलरली गाती प्राइवेट पार्ट्स उन खुरीन दुख चा चाहे
1: कैसा?
0: मेंस्ट्रुएशन यू चाहे माउस
1: ओ ना
0: छे मिंदा
1: ना
0: छे एक ल्यूब वार्म हल्का गर्म पानी नंबो साफ बचा
1: कैसा?
0: ना साबुन यूज में बचा ना उदे सेंटेड साबुन जेन छिक मतलब टीमा चंद साबुन का तो मत
1: ओ
0: है
1: ना ना
0: ओदोन माना हार्मफुल लिंग आती वजाइने फिल्ला चेस बन
1: कैसा
0: आती वजाइना ऑलरेडी एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन चिन दे खुश खोरा ना खोरा साफ बिन जक चिन
1: कैसा?
0: छा ना आते अगर कतुंग आते ओदो साबुन सा यूज बना का तो ओदे टाइम या मेन मेनली मेंस्ट्रुएशन टाइम या बना का तो नाती वजाइनल पीएच पो ऑलरेडी ऑल्टर छचिन दो ना मेट पी ऑर्गेनिज्म सा एंटर सों से छोन ना इन्फेक्शन छछु छिन।
1: कैसा?
0: ठीक दो जो ता वॉश रेगुलरली गातेस वॉश बचा दो ना हमेशा गचो अ वॉश बचन जन का तो गातेस जैसे कि गाती प्राइवेट पार्ट्स होते जैसे कि गाती कनर गया बलता से खर्चा
1: कैसा?
0: एनल एरिया बलता से ये नहीं कि गातेस रिया बना पेलर गया पे जगह खुचा एनल एरिया दिख ना गाता दुन लता से ऊंचा और सो में बचा हमेशा साफ बना का तो वॉश बना का तो पहला गाती वजाइनल पार्ट पो वॉश बचा दिख ना गाती एनल एरिया वॉश बसता अच्छा
1: कैसा?
0: वाइप बचना यहाँ देना दिख ना गातेस ऑलरेडी वॉश बसर क्या बनाते वाइप भेज दे टॉयलेट पेपर
1: ओना
0: नंबर वाइप बचाना या आगे का नर क्या बना गया बलता छाछा फ्रंट टू बैक तक से छाछा। ठीक
1: कैसा?
0: मिंदो जो दो ना आप नाते मेंस्ट्रुअल या पैड यूज़ बना या टैम्पोन यूज़ बना या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ बना हमेशा पहला लखपा साबुन नंबर खुचा दिखाना

0: yan chana khoi sang public e sang dian shog le ne center yang thru na ta se ama lecturing madrasa registered ba se khunte sang bawshin magar ur al ngachi tarap na 100% coverage jo dia ra ngachi dikana chana chang chu ma chang bute me dia na su maskut pa mane met ngachi sag register ba se kon center de yodna center de kaisim hot cook milta jin met na ngachang khama shi yaran khama song se khwa ngachi khama supply ba jin chi और होम विजिटिंग अच्छी हर महीने यहाँ दिया कुरंग शेड्यूल ऑटोमेटिकली लन मत कि गाँव ला होम विजिट बचिंग दिलचस्प यहाँ प्रेगनेंट हो चाहे कुछ उनसे तो छा होम विजिट शेड्यूल भी कैसा मैम
1: बेशक सर सेहत पो मैं नंगाति लगाचंग युत में दोना जन पिका अति सेहत पो गजुक सोल्यूशन दरखान पर नंगाति जन पो सा जन पिका डिपेंड छे चना यरस मूल्स की नंगाति दियानो कल्चरल हा बैरियर ची होंगे की नंगाते संग से जगह तंग चना नंगाति अच्छे नमूने दियो ने कना फन खेल इन तुक सम नका तो सम महीने अनु खुन रजिस्टर बार गोशन या खुआ संग से जगह से गोर नका तो खुआ दे बेनिफिट्स पो फन खे थपची नया मैं
0: उदो दक्षा दो छेर मैम दे अंगाची दे अनु टाइम फ्रेम छियो दे रा साल गने 1 साल सप या 1.5 साल सप मैंने कि यारा दी टाइम फ्रेम छी दुख मैंने सी ऑनलाइन दरे न सा ऑनलाइन रजिस्टर छात ऑनलाइन रजिस्टर छाना पोर्टल पे का मतलब 2 साल सना अप्रूव केस बिन जेना का तो देरिंग कोई मैटरनिटी बेनिफिट पता मने चा फायदे की मसो दो बिल्कुल पोर्टल पे का एक्सेप्ट बा बिनो यारा कोई एक्सेप्ट मबाना गा चा कोई मैटरनिटी बेनिफिट ता मायन इसलिए टाइमली टाइमली यारा सिर्फ 5000 या 6000 रुपया चलो एक वो गवर्नमेंट तरफ ने बेनिफिट है अच्छा है और दे मोइन दो ने यंबो यंबो कोई यंग चीज जो दिया ना चिकन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पोजन पो ताचा सु आयरन फोलिक एसिड खवा ताचा सु कोई वेट सक ना चेक चेक बचा सु दो ने यंबो कोई एएनसी सब चेक छेन में दूर ताचा सु यंग चांग कंप्लीशन मेंदु आयोत ने का तो दूर रेफर बसे को काउंसलिंग बसे ना ता टाइम यूथ पिक पहला कुरा वक्स के ना ते एहतियात बसे बचस पो जरूरी पिया मन जरूरी दुगिया ना छाना दसा नाती यारा दियंग यंग इंपोर्टेंट चीज दुगा दुसोर नाती कल्चर पहनो सुनते फ्रू चोक्स के से रिया अपना मतलब 6 महीने रिया अपना चलो 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरे नाची मैंने बिल्कुल सागर जैसे कि पूरा ब्रेस्ट फीडिंग बचो द हमें ओरिजिन को ताचू देर गया अपना कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पहनो गया ना अलग अलग यूथ पयास ना खुआ प्यूरी टाइप चोचा देर तीन ना खुआ यारा नाते मैश टाइप के चोचा दोन सब चो से गया अपना अलग अलग यंग खुआ वैरायटी ऑफ फूड जगचा ताकि कोई बिहेवियर पुंगाते चेंज बचिन सुनते फ्री दक्षा चीज नुंगाती देर यारा सुनते फ्रू अक्सर ओरिजिन न फेक स्कूल ठीक है ओरिजिन न फे बढ़िया है ओरिजिन न फे स्कूल ताँचा या चा स्कूल ताँचा मगर अक्सर अति 2-3 साल से आपको कंटिन्यू जाना चा स्कूल पुसा जाए चा स्कूल पुसा जा पाना कोई टेस्ट डेवलपमेंट मसूँ यारा कोई बिहेवियर भी चेंज मसूँ खुआ गैप नहीं यहाँ बाकी जनजस्सी हूँ मैं यारा फूल दो मैंने यहाँ छो इम्पैक्ट छे छो छाना बाकी आइटम खचिक जस्सी मांगाना चाहे मैं बैलेंस मसूँ खुआ खुआ अजन पु बैलेंस है कि मसूँ खुआ अंगा सुनमा ता मर गोस खुआ अंगा दाल ता मर गोस खुआ अंगाते शाह ता मर गोस या शाह जचा मैं इतना बाकी यहाँ प्रोटीन दाल रिक्स जो सोयाबीन हो दोन सक मतलब एक वैरायटी ऑफ फूड था मना था कम से कम प्रोटीन चिक मिनरल चिक बैलेंस डाइट चिक खुआ छा छा दो इंपॉर्टेंट दू यारा दो ला कम से कम सब सीख ना खामा ना बाओ तो नची लेवल का हर जगह नचे सेक्टर लेवल इवन मोहल्ला लेवल के ना डिस्ट्रिक्ट लेवल सब दी हर प्रोग्राम देन हर जगह सो से खुआ दिया अवेयरनेस था मत पब्लिक ने बुतुक पर देन अति लोकल पीआरआई मेंबर्स या अति काउंसिल ना लीडर सब खों से जेर चुपत कसम बिहेवियर पे चेंज भी
1: जी सर बैलेंस डाइट माना खाचन सुन सर छनंग अति दी हां पोषण अभियान स्कीम तहत गचुक डाइट हां बैलेंस डाइट थप छपी फिला गचुक जन रियो ची रियो दो चिक मोलचा
0: ngachi de nuna yana ministry norms jaisa ba matlab kurang cost norm chine nutritional norm shi yo dena jese ki calorie tong protein chik ba rangam chik tong energy wagera zare de phyang achi jara local government jara kafi azub ben yo de ko de ka zor bisale ne yo jana ngachi de skew yo de na skew ngachi jak se skew nu ko yara ngachi stanma stress yo na ti local dry stanma stress yo de ne yambo ngachi de yara halwa yo de ne mo ngachi yara rashma na rashma rice yo sna yara chi yo zubana ngati khijri chok shi cho se dige tamat pin thupa chola tamat pin yara do aksar phun la barga pere kha kon taste mein pasand ji yo mit de ngachi ngachi yara recently 2-4 minutes na ngachi change ba yara de minu ngati ngati yara recipe committee yo dige district level ka disease be some monitor bar dula de recipe committee anu ngachi kon change ba sena ngachi rice rashma jak se ra phun la aur morning snack mein jakta ngachi yara bajra khir ta chin de anu bajra ta chin de anu yara that's our origin yo de anu ta se अलग अलग स्केल के चोसो जरा प्रेग्नेंट कुरान स्केल चोसो सुनसे फुल कुरान स्केल चोसो 20 ग्राम योदना अमोल 30 ग्राम हो चिंता सो जगे मेनू अच्छी यारा सेटअप यो जो सो मोंग यो अच्छा मिलर्स ना चा कंपलसरी बस मिलर्स नु अच्छा बाजरा यो बाजरा ना चा गवर्नमेंट फॉरेज एनी के सप्लाई बा मैम चाना सप्लाई बा ना 100 ग्राम अच्छे कंपलसरी गवर्नमेंट इज देयर यो दिखो तो जरे बाजरी दूचा ना चा दे जगे खिचड़ी चोत बाकी स्क्यू यो जाशिया जक्षी मूंग राइस युद्ध जक्षी राजमा राइस युद्ध

0: yakshiga halwa yot dunem bo motok chok anganwadi center yang skyot pana phun saga phun cha yot magar do morning snack bo morning snack bo khon bajra khir yot aur halwa nu ngache khara mita ma halwa nu ngache jegri ta ma chamna ngacha gin na order yong se dasa ki sugar kono sar bo kam bo zere chana de de nu ngachi ngati menu alag gomini saba chamna du cost nom punam bo nutritional norms punis ka zoom se met panga cha बामेन माने दो दे थ्रू बस यो बाकी बैलेंस डाइट जितना का यारा आम दन देनो मिसा का गति लोकल सुजंती इंडियन इंडियो नगर तो को बैलेंस डाइट को अक्सर में चीजो चीज मिजो संबिक टॉक्सिक परेशानी कंफ्यूजन टॉक्सिक छ आम में यारा एक्सपर्ट छे ने पता छे दिया सेल खान छे पता छे दी फे यारा थाली ला चार हिस्सा आम गति दे थाली यो थाली के चार हिस्सा बावशिन चार हिस्सा बना दे का अगर नतेस बातो की जक्स देखे दालची बुली की जक्स देखे ना देखे टकी बुली की जक्स देखे ना देखे छुनमे की जक्स दो पूरा बैलेंस हो सर देन सुन मैं अनुना यंग न्यूट्रंस जरा एन उन्हें दाल पे अनुना प्रोटीन हो शह शख्स भी जगह शेख युत भी जगह दाल को मजाक न डिक शह युत भी जगह सुनमा उन्हें शाओ दो न बतुक बुली टकी बुली या सलाद ची बुली चौशी दस होगा सुन पोत सुनमा युद्ध नती देन विटामिन न मिनरल सुनमा न फ्रूट योद या दोन सक योत अच्छा प्रोटीन प्रोटीन पुया स्ट्रोगा मैंने जरूरी है देखिए दाल योत सोयाबीन योत शाह जखन लशा योत फूल जखन लांग फूल यो दस होगा दौ सक बैलेंस डाइट पू चार थाली चार हिस्सा बसे ना खुआ बतो दाल सुन में टकी तूने सलाह चीज से जाचा दो का तो अच्छा दाल में पी जाएगा शेक ना दाल मजाक नी सुन में जा से ना शाह दाल जा से ना तो हमने प्रोटीन पू पक्ष है ना शह ना उसको दे चाहे दो सौ बैलेंस बसे कोई जाचा जा अक्सर मिस माल न्यूट्रिशन पर समेत की कमजोर छा ना माल न्यूट्रिशन सो समेत गाची दें चीज ऐसी जब ना माल न्यूट्रिशन पर कमजोर छा ना गाचिस अंडर न्यूट्रिशन सो जैसी कमजोर सो माल न्यूट्रिशन कैटेगरी यूँ मार को अंडर न्यूट्रिशन है लूस को कमजोर लूस को चीज खची कमी लूस चाहे खो प्रोटीन लूस चाहे खो विटामिन से लूस मिनरल से लूस को कमी लूस है को कमजोर से हंसों जैसी और न्यूट्रिशन छना यार आता वेट मन किमो एक्सेस छना कोई हाइट हिसाब कोई उम्र हिसाब वेट मामो छना ओबेसिटी जरूरत नाते ओवर वेट जरूरत दो अंगाची दें माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी हंसती है दो चीज हो यार जरना को एक्सेस हो यारा को प्रोटीन को एक्सेस हो या को यंग चीज एक्सेस हो को गोशा से बसंग क्यों एक्सेस मामो इनटेक बस खासी खुआ फिजिकल एक्टिविटीज में दक्षा डुलचस में लस में पना दो अंगाचे माल न्यूट्रिशन हर चीची नेरा मैम दो ना चीज चीची गया रहा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जैसे ना चीज चीची गया खुद बैलेंस वैसे मजा ना चीज चीची जैसे कि खुआ कमी सो प्रोटीन ही यारा प्रोटीन को कमी छाने का तो यंग यारा देनो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन जैसे ना चीज खुआ प्रोटीन दो ला यंग जर्मो बर दो यंग चीन यारा पोत पोत छचा कामा इम्बैलेंस छचा बॉडी यूनिट छचा दो चौ चीज खची गयो यारा दा चौगा जैसे कि गाता यारा विटामिन सी खुरी कमी छाने गाता स्केवरीज रे गाता खराब विटामिन ए कमी छाना गाता मी कमजोर छे छाना बैलेंस मजा ना का तो चीज चीज कमी छाना को दे चीज चीज कमी मसा चेस नो चीज यारा चाहे को यंग स्टॉक पे जरे मी यंग दन जैसे कि गाता जैसे कि दसना यारा तो मिसाल के तौर पर गाती पोलियो पोलियो छेद पा चीज चीज कमी छाना पोलियो सो पोलियो वैक्सीन तां से गाता खत्म सो छाना चीज चीज कमी छाना वो उसकी कमी की वजह से वो बीमार हो सकता है वो प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो सकता है दे फिर बैलेंस जचस पो सब जरूरी चाहे गाती स्ट्रोक बोला हर चीज पर वो से माती स्ट्रोक पुला नंगो सिस्ट्रो के निजाम बुडुल भी पिया दी चीज सुन सकर गोसे न्यूट्रन सुन सकर गोसे दियारा दि संभव मन पास
1: वशे सर माने यारी फ्रॉम मचन स्पेरान दी स्की मोंदी फन के उत पी चीज सुन यारस गति अच्छे न मोन सक पिखले चोस नता वक्स पो कम यत पाना जम सेंग अस यंग फेरी गरा उज यु सेरिंग मोजरेत ई अस्सलाम वालेकुम
0: या वालेकुम अस्सलाम मैम शुक्रिया बख्शीस यारी दी मौका तंस थैंक यू मैम
2: उनानी ध्यान त्रिसुन यंबो दिनिन सी खोरतंस पु थमाथुन और दंग मयो दंग खोरतं शिस्ट्रोलिका यंतन यम थुक थुक देमन पुंगा इजन शजे बस
3: दरें तेज प्रोग्राम गिनी नुतपिन अच्छे नुमाइफिया प्रोग्राम आंसर तंग हन पुइन मिन गुलजार हुसैन ने प्रोग्राम फिर चुक हन पुइन मिन बिलकिस फातिमा मीरिंग वे कदी आकाशवाणी करगिलिन वक्स पर खबर न्यूज़ सोसु कसता पुरगी खबर लाइन नसत

ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जनगण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों के एक ही सम्मान

मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृहमंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृहमंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहां नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता।
नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से

की रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एलके सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं न कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी।

उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है? उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस की रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

सामिन, अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा सुन रहे थे। मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 MHz के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। शब के 8:15 हुआ चाहता है। आइए सामीन, प्रोग्राम समाप्त कीजिए फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद। फिल्मी गीतों पर मैं अपने प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर हम हाजिर खदमत हैं। प्रोग्राम सुनने वाले तमाम फौजी भाइयों और दोस्तों की खदमत में हमारा मोहब्बत भरा सलाम। तो लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में समाप्त कीजिए ये गीत।

आप समाप्त कर रहे थे जगजीत सिंह को, फिल्म थे बाबुल। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। प्रोग्राम के आखिर में आइए समाप्त करते हैं कुणाल गांजावाला को। फिल्म का नाम है बच के रहना रे बाबा। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: जारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है।

0: लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
1: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
4: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
6: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं।

बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर,

0: उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपये पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है।

0: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Radha Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Radha Sabha, the discussion is underway on public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. We have more from a correspondent.
2: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha today approved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill yesterday. After approving the legislation, the lower house was adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Rajya Sabha is discussing the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, which was cleared by the Lok Sabha yesterday. The Lok Sabha today faced adjournment as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this disruption, question hour and zero hour in the lower house could not be taken up. In Rajya Sabha, both question hour and zero hour went on smoothly. With Suparna Saikia, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CSS, to review the situation in the context of the ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism

0: Iraq beat Indonesia's Nikadek Dinda Pratiwi. Devika Nunati will face each other in the top eight. Kiran George kept the Indian challenge alive in the men's singles, defeating compatriot Tharun Mannapalli. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points, or 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज हासिल होगा जो कौमी तराने को हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाहों समेत शहरियों के मफादात के तहफ्फुज के लिए एक मुत्तहिदा निजाम कायम किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने नीट एहतजाज में हिस्सा लिया था। अलबत्ता मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को कोई तहफ्फुज हासिल नहीं होगा। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया के तनाजे के फौरी हल की उम्मीदें मांद पड़ गई हैं। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल इंतहाई तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। दौलत मुश्तरका खेलों में जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह मर्दों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी ताजीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज इस बिल को मंजूरी दी, राज्यसभा में ये बिल कल मंजूर हो चुका है। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कौमी ताजीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 1971 में मजीद तरमीम के लिए बिल पेश किया। इस कानून की रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज फराहम किए जाने की बात की गई है जो कौमी तराने जन मन गन को हासिल है। इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि यह बिल सिर्फ एक कानूनी तरमीम नहीं है बल्कि यह बिल भारत की सकाफती विरासत, कौमी शनाख्त और मुल्क की जद्दोजहद आजादी के मिसाली तसव्वुरात की नुमाइंदगी करता है।
2: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: इससे कल बहस में हिस्सा लेते हुए डीएमके की के कनिमोझी ने बिल की मुखालफत की। उन्होंने दावा किया कि ये बिल मुल्क के अवाम को तकसीम करता है। बिल की हिमायत करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि ये कानून बहुत अहम है। जनाब पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आइन साज असेंबली को यकीन दिलाया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को यकसां एहतराम फराहम किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गांधी खानदान की क्यादत वाली कांग्रेस हुकूमतों ने वंदे मातरम को कभी मुनासिब एहतराम नहीं दिया। बिल की मंजूरी के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी।

तहकम करेगा और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इख्तरा के लिए भारत को एक आलमी हब के तौर पर कायम करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस समझौते पर दस्तखत करना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक नए बाब का आगाज है। तकरीब से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि ये इकदाम रियासत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डिजाइन पैदावार और आलमी बरामदात के लिए एक कलीदी मरकज में तब्दील करने की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के तीन असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया हलके में वोट डाले गए। चुनाव कमीशन के मुताबिक बांकीपुर हलके में आखिरी खबरें मौसूल होने तक 34% से ज्यादा वोटिंग हुई। मंजालपुर हलके में 37% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि दतिया हलके में 71% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने आज एक दूसरे पर ताजा मिसाइल के हमले किए, जिसके बाइस बड़े पैमाने पर इलाकाई जंग के अंदेशे उभर कर आए हैं। नीज किसी फौरी हल के लिए इम्कानात मादूम हो गए हैं। हलाकतों में कलील वक्फे के बाद इन ताजा हमलों ने इस तशवीश में इजाफा कर दिया है कि ये जंग मजीद मुल्कों में भी फैल सकती है। उर्दून ने कहा है कि उसने मुसलसल दूसरे रोज 5 ईरानी मिसाइलों को नाकारा बना दिया है। कुवैत ने खबर दी है कि मुल्क के जुनूब में एक चीनी कंपनी से ताल्लुक रखने वाली एक इमारत ईरानी हमले से मुतासिर हुई, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जंग का यह हालिया फैलाव ईरान पर वसी पैमाने पर अमरीकी हमलों के बाद हुआ है, जो उसने उर्दुन में एक फौजी ठिकाने पर ईरान के मिसाइल के हमले के जवाब में किया था। दोनों जानिब से मिसाइल के ये हमले सऊदी अरब के साथ तालमेल से अमरीका के जरिए इराक में ईरान की मुआविनत वाले मिलिशिया पर किए गए हमलों के बाद हुए हैं। खबर है कि हमलों में कम से कम 20 फाइटर्स और 6 ईरानी फौजी मुशीर हलाक हुए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसल्ला फौज की जानिब से वहशियाना हमले के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी मुसल्ला फौज की फायरिंग में पीर के रोज 40 से ज्यादा सिविलियन हलाक हुए थे। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स में मुजाहिरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा गया है कि मुजाहिरीन वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ रावलकोट के डी चौक पर कई दिन से बैठे हुए हैं और वो एक लॉन्ग मार्च का नारा दे रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए बेरहमाना और बहिमाना हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। JAAC ने अक़वाम मुत्तहिदा, बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों और जमहूरी हुकूमतों से मुदाखलत की अपील की है। उसने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कारामद, गोला बारूद और बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रियासतों में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज करते हुए तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत इन चैलेंजों से निमटने के लिए मुतालिका रियासती सरकारों के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने सबकी सेहतयाबी और तहफ्फुज के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात और मध्य प्रदेश में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की रेड अलर्ट वार्निंग जारी की है। आइंदा दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाल मशरकी भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के मौसम की सूरत हाल रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में कल गरज चमक के साथ बिजली चमकने और तुंध हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। दिल्ली के लिए महकमा मौसमियात ने कल आम तौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि सैलाब के पानी के बाइस महानदी दरियाई निजाम में तुगयानी आ रही है। इसी के साथ इम्कान है कि बहुत बड़ी मिकदार में सैलाब का पानी आज शाम तक मुंडाली पहुंच जाएगा। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में नीरज चोपड़ा मर्दों के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह भी इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज 5वें मकाम, रोहित यादव 9वें और यशवीर सिंह 10वें मकाम पर रहे। इससे पहले भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों के पैरा एथलेटिक्स मुकाबलों में मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल

0: मुकाबले में दिलीप महादो गविट ने सोने का और मोहम्मद बासिल मोरिसिंग काथ ने चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम की। गाविट ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 10.71 सेकंड का एक नया रिकॉर्ड कायम किया और सोने का तमगा जीता, जबकि बासिल भी इस सीजन के बेहतरीन रिकॉर्ड 10.83 सेकंड में अपना गेम पूरा करके दूसरे मकाम पर पहुंचे। इंग्लैंड के केविन ने 10.85 सेकंड में अपना खेल मुकम्मल करके कांसे का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों के पैरा 100 मीटर T47 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने के लिए दिलीप महादो गाविट को मुबारकबाद दी है। इसी के अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज़ हासिल होगा जो कौमी तराने को हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाहों समेत शहरियों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए एक मुत्तहिदा निज़ाम कायम किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने नीट एहतजाज में हिस्सा लिया था, अलबत्ता मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को कोई तहफ्फुज़ हासिल नहीं होगा। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया के तनाजे के फौरी हल की उम्मीदें मांद पड़ गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: دریان تیز آکاشوانی دلی نا ہندی انگریزی دن اردیان خبر لائن ان چیت پن میڈیم وفی کتیو آکاشوانی کرگلن وقت بہت سانی تو سطر گناہ پھت سنسک کستار سخماس دوت کرے گا ین نزد
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
2: क्वेश्चन नंबर 21।
3: प्रश्न संख्या 121, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
4: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रहा
1: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
2: थैंक यू सर। Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and the tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports? Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation? The expected...
1: Konstantinji, be specific about your question. Okay. So long question, then come to the specific question, please.
2: Okay.
1: Carry on.
2: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
5: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit-sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit-Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, the State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and Management Committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
6: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Frame

0: work specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kollam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
2: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit, the concerned community, which is the question is raised by the particular member. Yes.
1: Third supplementary. श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
3: एनवायरमेंट तथा बायोडायवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडायवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
2: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
2: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है. वो बायोडायवर्सिटी से अलग है. अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे.
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122 श्रीमान ए रहीम जी.
5: प्रश्न संख्या 122. क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है. ग

0: क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
2: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन द डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी व्हिच सीक्स टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड वाज सपोर्टेड बाय द बोथ इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स especially when such absenteeism risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
0: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉयज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बन गया। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर से, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर उसके लिए काम करते करते

0: से कोई भी दिक्कत आई उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिलाकर हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसे पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा ITI की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक ITI काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्री

0: इसके क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है। कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग VDA पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो

0: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है, और ग मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
2: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले काम की जगह पर, उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए, और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए, और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
3: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहे हैं, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसके पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसको आंकड़ किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 करोड़, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताए हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो लाख स्टार्टअप के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे, नए नौजवान

0: युवती यह स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेनर्स बनाए हैं। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना, एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरे देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार मेला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिशर्स का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और एनी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक का हम बढ़ाए सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रहे हैं। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, यह मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

0: माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में चार कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
4: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा